मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि तदनुसार 13 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी CID जाँच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC A और OBC B के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में OBC A और OBC B वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

अभी आपने संत कवि तुलसीदास की रचना सुनी। आइए पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में सुनते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोमकली को। जूथिका राय के स्वर में सुनते हैं कबीर की ये भक्ति रचना।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर के एस राठौर का आलेख, वाचक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: दुर्भावना सद्भावना का विलोम है। सद्भावना का संबंध संवेदना से है, जिसका स्थान मानव हृदय है। वर्तमान में दुर्भावना के कारण विश्व में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। दुर्भावना का शमन करने का प्रारंभिक माध्यम सहिष्णुता है। दुर्भाव वालों के प्रति सहानुभूति रखी जाए और उनके दोषों को मैत्रीपूर्ण ढंग से उन्हें बताया जाए। कड़वे घूंट पीकर ही मधुरता का अच्छा अनुभव होता है। विश्व कल्याणार्थ शिवजी समुद्र मंथन से निकले संपूर्ण विश्व को पी गए थे। अमृतपान करता तो देव कहलाए और विष का पान करने वाले महादेव कहलाए। मानो वे विष और राम के संयोग से विश्राम पा गए। परिणाम यह हुआ कि शिवजी की सहिष्णुता के कारण संपूर्ण विश्व को जीवन मिला। दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को कुछ दायित्व प्रदान कर मनोनुकूल बनाया जा सकता है। साथ ही सभी वर्गों के साथ मानव धर्म का निर्वाह निष्पक्षता पूर्वक हो। वनराज सिंह जैसे हिंसक पशु को भी सुधारा जा सकता है, जबकि मानव तो गुण और ज्ञान का खजाना है। बस उसकी अच्छाई पर पड़ी हुई दुर्भावना की परत को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। प्रहलाद ने अपने ज्ञान भक्ति के बल पर सभी साथियों की दुर्भावना को निर्मूल कर मनोनुकूल बना लिया। चोर डाकू हत्यारे दुष्कर्मी इत्यादि 2400 घंटे दुर्भावनापूर्ण नहीं रहा करते, उनमें भी एक क्षण को मानवीय झलक पाई जाती है। इन समस्त दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को उन्मूलित करने हेतु हमें अपने भारत के कल्याणार्थ आध्यात्मिक सुकृत्य करने होंगे। अंतःकरण को शुद्ध करके उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी होगी जो कई नामों से सबका पिता है। मानव का चेहरा एक इंडेक्स है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो मानव के आंतरिक भावों का दिग्दर्शन कराता है। दुर्भावना न छिप सके चेहरे पर मंडराए, दो नैना कह देत हैं हेय का हाल बताए। देश के शुभ चिंतकों का ये परम कर्तव्य है कि अपनी सूक्ष्म दर्शिता से अवलोकन कर दुर्भावना को पनपने का अवसर न दें। आवश्यकता है सोच बदलने की। विरोध को प्रेम से जीता जा सकता है। विद्वानों का कथन है कि ये जगत एक दर्पण के समान है। यदि हम दुर्व्यवहार नहीं करते तो दूसरे भी हमारे साथ नहीं करेंगे। व्यवहार शुद्धि से हमारे भीतर सात्विक विचारधारा प्रवाहित हो जाएगी और संपर्क में आने वाले सभी दुर्भावना मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि जो संवेदन शून्य होंगे उनमें कोई अंतर नहीं आवेगा, तथापि अधिकांश व्यक्ति प्रभावित होंगे। विद्वानों से सुना है कि मानव मन भी एक खेत के समान है, जिसमें विवेक का हल चलाकर विश्वास का बीज बोना है। नम्रता का खाद देकर ज्ञान जल से सिंचित कर अमृत फल उपलब्ध करना है, तब दुर्भावना खरपतवार की भांति उन्मूलित हो जाएगी और जन जन में अमृतत्व का संचार कर प्रातःकालीन नवल वेला आ जाएगी। भावना यदि सच्ची है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अनुकरणीय व्यवहार के माध्यम से मानव की कई बुराइयों का अंत हो सकता है। सत्य, सरलता, सहजता, नम्रता और अहिंसा आदि के द्वारा दुर्भावना को सद्भावना में परिणित किया जा सकता है। इन युक्तियों से निश्चित ही हम दुर्भावना के शमन करने में सक्षम सिद्ध होंगे और परिणामों में अपने भारत को सुख, चैन और संपन्न स्थिति में पाकर महिमा मंडित कर सकेंगे।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर के एस राठौर का आलेख, वाचक थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे हैं एसपी सिंह।
1: पशुपालकों को सलाह है, डेयरी उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो डेयरी दूध और दुग्ध उत्पाद हैं उनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में इनकी मांग खत्म नहीं होनी है। तो हर गांव, कस्बा, शहर, हर जगह दूध उत्पादों की मांग है और इसका भविष्य उज्जवल है, बशर्ते इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। तो पशुपालक भाई सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि आप प्रजनन पर विशेष ध्यान रखें, अच्छी नस्ल का पशु रखें। नस्ल अच्छी नहीं है तो आप कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से या अच्छे नस्ल के सांड से उसको गर्भाधान कराएं तो नस्ल सुधार हो। दूसरी चीज़, खिलाई पिलाई पर विशेष ध्यान रखें, आप विशेषकर संतुलित आहार, संतुलित पशु आहार और संतुलित हरे चारे का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आवास प्रबंधन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कर गाँवों में देखा गया पशुपालक पशु तो पाल लेते हैं पर आवास बहुत अच्छा उनका अच्छा नहीं होता, कहीं छप्पर के नीचे या वैसे ही गंदगी पड़ी है। आवास न अच्छा अच्छा न होने की वजह से भी पशुओं को बहुत सारी बीमारी लग जाती है। साफ सफाई अच्छी नहीं है पशुशाला की, गंदगी रहती है, कीचड़ रहती है, तो एक बीमारी बहुत बड़ी तेजी से पनप रही है जिसको थनैला के नाम से जानते हैं, आपके प्रबंधन से ही जुड़ी बीमारी है। तो पशुशाला साफ स्वच्छ सूखी रखें और पर्याप्त स्थान हो जिससे पशु तनाव में न आए। एक आदर्श पशुशाला के लिए, एक पशु के लिए, गाय भैंस के लिए जो आदर्श स्थान है वो 12x12x12 यानी 12 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा, 12 फुट ऊँचा पर्याप्त स्थान रहता है एक पशु के लिए, खासकर एक गाय भैंस के लिए। वाह्य और आंती परजीवी ये पशुओं के बहुत बड़े शत्रु हैं। इनका आप जो चिकित्सा के माध्यम से इलाज कराना चाहें डॉक्टर से, इलाज इनका संभव बहुत मुश्किल है। आप इसको प्रबंधन में शामिल कर लीजिए। तो जैसे आप पशु के दुधारू पशु के पेट में कीड़े हैं तो उस दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन का 40% हिस्सा पेट के कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जो दूध बनता है दूध खून से बनता है। दूध की जो मोटी सी नस होती है, दूध की नली नस कह देते हैं हम उसको, उसमें खून के मादा है और खून जब अयन में आता है तो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, दूध ग्रंथियां होती हैं, उस दूध खून में से ग्लूकोज और कैल्शियम निकल के अलग होता है। ये कीड़े उस खून को चूसते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं, फलस्वरूप खून की कमी हो जाती है, दूध खून बन रहा है तो दूध का निर्माण कम होता है और कई सारी बीमारियां लगती हैं। इसलिए हर दुधारू पशु को या जो 1 साल से बड़े पशु हैं, हर 4 महीने के अंदर पर उस पशु को उसके शरीर भार के अनुसार पेट के कीड़ों की दवा एडबंडाजॉल साल्ट के नाम से आती है उसको खिलाएं। यदि गर्भवती पशु है तो गर्भ ठहरने के 5वें महीने पर और ब्याने के 1 महीने बाद गर्भवती पशु को फेनोमार नाम की साल्ट की दवा आती है उसको खिलाएं, तो उससे जो है गर्भ भी सुरक्षित रहेगा और गर्भावस्था के दौरान जब हमारे पशुपालक भाई पेट कीड़ों की दवा देंगे तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके पेट के कीड़े भी गर्भावस्था के दौरान ही खत्म हो जाएंगे। और बाह्य परजीवियों के बचाव के लिए पशुपालक भाइयों के बाजार में बहुत सारी दवाएँ आती हैं, उस दवा को 1 लीटर पानी में 2 ml के अनुपात में मिलाया जाता है, पूरे शरीर पर ऐसे चुपड़ना है आँख नाक मुँह छोड़ते हुए, और चुपड़ने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आप नहला देंगे तो बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे। आज बाजार में कई सारे इंजेक्शन के रूप में भी अंतः परजीवियों बाह्य परजीवियों की दवा आती हैं, तो जानकार कोई व्यक्ति है तो ये, क्योंकि इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस और आपकी खाल के बीच में इंजेक्शन लगता है, तो इस इंजेक्शन को लगवा के भी इसका निदान कर सकते हैं। पर ध्यान रखें जो गर्भवती पशु हैं उनको इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है तो वो दिक्कत भी दे सकता है, परेशानी भी पैदा करता है। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, हम उनको भी दवा बता सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पशुपालन प्रबंधन के रूप में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे पहला हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, अपने केंद्र पर बुला के प्रशिक्षण देते हैं, उसे ऑन फार्म ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा हम गाँवों में जाके किसानों के घर पर जाके किसानों के खेत पर जाके वहाँ किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रशिक्षणों में, क्योंकि पशुपालन कार्य में सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं, माता बहनें करती हैं, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि महिलाएँ हमारी शिक्षित हों, महिलाएँ पशुपालन की तकनीकी को सीखें और वो उसे अपनाएं। तो केंद्र पर प्रशिक्षण और केंद्र से बाहर प्रशिक्षण, पूरी तकनीकी ज्ञान उसमें बताते हैं। इसके अलावा हम किसानों के यहाँ प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं, जो भी तकनीकी हमारी कृषि शोध संस्थानों में विकसित हो रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो शोध संस्थान है वो तकनीकी हमारे केवीके पे आती है प्रसार प्रसार के लिए, केवीके के काम ही प्रसार प्रसार है। तो उस तकनीकी के जो प्रदर्शन हैं, तकनीकी ज्ञान है, उनके प्रदर्शन जो हम किसान की भैंस पर, किसान की गाय पर डालते हैं। जैसे दूध बढ़ाने का एक कार्यक्रम है तो वो हमने तकनीकी का डाला, उसका दूध बढ़ता है, किसान को तुरंत दिखता है, किसान उस तकनीक को बहुत जल्दी अपनाता है और प्रयोग में लाता है। गाय के दूध का बहुत अच्छा छेना बनता है, पनीर बना सकता है, दही बना सकता है और इसको जो है घी बना सकता है, खोआ बना सकता है, इनको जो है बाजार में आप बेच भी सकते हैं। बाजार में आप पहले से संपर्क कर लें तो बहुत सारी डेयरियां बाजारों में चल रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैटर्स हैं, वो सीधे आपसे संपर्क कर लेंगे और आप अच्छा पनीर और छेना और घी दही बेच सकते हैं।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ कैसे। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242।

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी
0: खुशहाली।
2: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7 हिंदी में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगं अधिकाधिकं पारदर्शिकं उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
4: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब

0: जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्य अंतर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 6,100 मीटर मिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्यां एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीय दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
4: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
2: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सा पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर जगमोहन श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ सुना जा सकता है। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं।

9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे यखलेश बघेल का ध्रुपद गायन। जिले की चिट्ठी 10 बजे भोपाल से अनुप्रसारित होगी और श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनेंगे 10:05 से। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं।

श्रोताओं, आज है गुरुवार। आज शाम 4 बजे आप सुनते हैं विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है। 5 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, जिसमें 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जो जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। 6 बजे होता है NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमारे केंद्र से लोक संगीत के कार्यक्रम में बाबूलाल कुशवाहा और साथियों का गाया झूला गीत सुनवाया जाएगा और मोहन सिंह कुशवाहा की गई गारी सुनवाई जाएगी। 7:30 से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, जिसमें 8 बजे संसद समीक्षा होगी और संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही का प्रसारण रात 10 बजे से किया जाएगा। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के बड़े तालाब में निकाली जाएगी नौका तिरंगा यात्रा। अहमदाबाद निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को व्यापक परामर्श संसद दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इस समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के 21 सांसद, सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। भोपाल के बड़े तालाब में आज नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से बोट क्लब से यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का मंत्री विश्वास सारंग ने कल जायजा लिया और सुरक्षा, यातायात, नाव संचालन और गोताखोरों तथा SDRF की तैनाती के निर्देश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए

0: निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: मध्य प्रदेश और गुजरात ये परस्पर एक दूसरे के साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर अपनी साथ में प्रगति के लिए चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मां नर्मदा के कारण से गुजरात की भी समृद्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन समय जब सीएम थे उसी का लाभ गुजरात को भी मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला। अपने राज्य के गुजरात के में व्यापारियों को जो गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करे, साथ ही समान रूप से मध्य प्रदेश में भी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए।
0: उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। संवाद में 500 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रपति के विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेंगे। इनमें पुलिस के 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदक जबकि होमगार्ड के 3 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। इसके अलावा 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मरणोपरांत मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को भी सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता बाधक नहीं बने। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या उनका डिमोशन ना किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। वह एनीमिया नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए तैयार उत्कृष्ट आईईसी सामग्री को बेस्ट आईईसी डिस्प्ले सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदान किए गए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,33,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समारोह को संबोधित कर रही थीं। इनमें सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं। श्रीमती गौर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। इसके गठन से सिंहस्थ से जुड़े विकास, अधोसंरचना और प्रशासनिक कार्यों को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है। भोपाल में आज से हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे महापौर मालती राय करेंगे। इसमें देशभक्ति, विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। भोपाल में भारी बारिश के बीच जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया है कि बारिश से पहले ही नगर निगम, एसडीआरएफ, ट्रैफिक, राजस्व और

0: सड़क से जुड़े विभागों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टीमें लगातार काम कर रही हैं।
1: बहुत सी जगह हैं जिनकी मुझे भी सूचना मिली है, मुझे भी जो फीडबैक मिला है, जहां पूर्व वर्षों में पानी ज्यादा भरता था, बट इस बार जो है वहां साफ सफाई से वहां उतना तेज पानी नहीं भरा और निकला भी, समय पर निकल भी गया। शायद ही कोई शहर हो ऐसा देश का, आप चेन्नई ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हर जगह ये अर्बन फ्लड्स जो है वो एक सच्चाई है शहरों की। हम ये सोच लें कि पानी कहीं पर एक बूंद भी नहीं रुकेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन वो किस गति से निकल रहा है और जो भी स्थानीय प्रशासन है वो किस गति से काम कर रहा है, यही हमारा रोल है।
0: वहीं कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते विभाग ने आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में खरगोन, खंडवा, गुना में तेज बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के शासकीय महाविद्यालय दलौदा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में नशा मुक्ति युवा भारत थीम पर जिला स्तरीय विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नीति धारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में एड्स के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कल जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का यही ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं जगमोहन श्रीवास्तव से उनका कविता पाठ।
1: एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं

झुक जाएगा गगन भी तारे समेट कर उत्सर्ग।

सिपाही बदला है अब जमाना, सिंदूर की कसम है बंदूक से निभाना। एक गीत मेरी अभिलाषा, हे इस ज्ञान का दो प्रकाश, मैं काम राष्ट्र के आ जाऊं, बाधाओं में विपदाओं में मानवता अक्षुण पा जाऊं, कर सकूं शूल का मूल नष्ट, सुमनों के हित चिर शांति लिखूं, उत्तुंग शिखर पर पंगु चढ़े, कुछ अगम सुगम शुभ क्रांति लिखूं, मिल जाए तन मन मिट्टी में, हर श्वास वतन को दे जाऊं, हे इस ज्ञान का दो प्रकाश, मैं काम राष्ट्र के आ जाऊं। वो अंतिम छोर उपेक्षित है उधर अग्नि मुस्कान मलिन, जिन कंधों पर सौ सृजन पले, उसके आगन में तिमिर सघन, हो सुलभ सभी को संविधान, ऐसा विधान मैं बन जाऊं, हे इस ज्ञान का दो प्रकाश, मैं काम राष्ट्र के आ जाऊं।

जल स्वच्छ हवा उसके आंगन में भी धर दूं, पाषाण फिर से हो जाए ऐसी मानवता ढल जाऊं। हे इस ज्ञान का दो प्रकाश मैं काम राष्ट्र के आ जाऊं, उस मूक बधिर के कानों में जनगण मन का गीत पढूं, उन पथराई सी आँखों में मौलिकता के कर्तव्य गणूं, हर पात गात ऋतुराज छुए सौरभ।

पले मानस जीवन स्वजन यहाँ के स्वर्ग हमारे गाँव तले। अरुण शिखा की करकस ध्वनि सुने पौफटते जग जाते हैं, मात पिता गुरु अग्रजनों को हम सब शीश झुकाते हैं। कर पर से जब देव शीश पर और सुमारग पांव तले, मानस जीवन स्वजन यहाँ के स्वर्ग हमारे गाँव तले। पहली रोटी गो माता को उसके बाद कलेऊ, हिंसा रहित हमारा भोजन

तले मानस जीवन स्वजन यहाँ के स्वर्ग हमारे गांव तले। कलम दबात हाथ में पट्टी, पट्टी में किट किन्ना,

नजरें पड़ता सबके पांव तले, मानस जीवन स्वजन यहाँ के, स्वर्ग हमारे गांव तले। कि ब्यारू करे अगे आने तापे, द्वार अलाव जला के, कक्का ददा मित्र मंडली बैठे अदब बुला के, सुने कहानी किस्से गप्पे बैठ पेड़ की छांव तले, मानस जीवन स्वजन के, स्वर्ग हमारे गांव तले।

चाचा चले न कोई दाव जले, मानस जीवन स्वजन यहाँ के, स्वर्ग हमारे गांव तले।

अभी आप सुन रहे थे जगमोहन श्रीवास्तव से उनका कविता पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। श्रोताओं, आज श्रीदेवी का जन्मदिन है। श्रीदेवी जब तक जीवित रहीं, सिल्वर स्क्रीन पर छाई रहीं, सुपरस्टार अभिनेत्री। आइए उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ हिट गीत, बल्कि कहें कि सुपरहिट गीत सुनते हैं।

श्रीदेवी का जन्म आज ही के दिन 1963 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अभिनय आरंभ कर दिया था। वो एक तमिल फिल्म थी, उसमें श्रीदेवी ने लॉर्ड मुर्गा के किरदार को निभाया था। ये फिल्म 1967 में आई थी, लेकिन ये बाल कलाकार, वो भी दक्षिण भारतीय फिल्मों की, एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार हो जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बहुत लंबा फिल्मी करियर रहा श्रीदेवी का। लगभग 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें हिंदी फिल्में, तेलुगु और तमिल फिल्में तो थी ही, साथ ही साथ मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्म में डेब्यू किया उन्होंने फिल्म 16वां सावन से। ये फिल्म 1979 में आई थी। ये फिल्म बहुत चली नहीं, इसी वजह से श्रीदेवी वापस दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर लौट गईं। 1983 में एक बार फिर उन्होंने कमबैक किया हिंदी फिल्मों में। फिल्म थी हिम्मतवाला, सुपर डुपर हिट साबित हुई ये फिल्म, और फिर श्रीदेवी हिंदी फिल्मों की होकर रह गईं। बहुत कामयाब रहीं। हिम्मतवाला फिल्म में उनके ऑपोजिट थे जंपिंग जैक जीतेंद्र, और फिल्म हिम्मतवाला का ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो बेहद मकबूल है। और ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि बाद में एक और फिल्म बनी हिम्मतवाला, उसमें इसी गीत को लिया गया।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
6: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल

0: का ब्लड सेफ है या
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
0: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: मिस्टर इंडिया, चालबाज और नगीना, हर फिल्म में श्रीदेवी का एक अलग अंदाज था। 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म नगीना। ये श्रीदेवी के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। श्रीदेवी ने इसमें इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था। और एक गीत याद होगा इस फिल्म का आपको, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। श्रीदेवी और अमरीश पुरी दोनों ही के किरदार इस गीत की वजह से बेहद मकबूल हुए। बेहतरीन डांसिंग स्किल्स का भी श्रीदेवी ने इसमें परिचय दिया। इसके बाद नाग नागिन जैसी फैंटेसी पर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन नगीना कोई नहीं बन पाई। मिस्टर इंडिया 1987 में आई और 1989 में आई श्रीदेवी के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म चालबाज। इसमें श्रीदेवी ने दो जुड़वा बहनों की भूमिका अदा की थी, ठीक वैसे ही जैसे हेमा मालिनी ने सीता और गीता में की थी। इसका एक गाना श्रीदेवी ने 103 डिग्री बुखार में शूट किया। ये था श्रीदेवी का समर्पण। बिना आराम किए पूरे जोश के साथ एक गाने की शूटिंग करना आसान काम नहीं था, और वो भी गाना बारिश का था। चलिए वही गाना आपको सुनवाते हैं, सुनिए और महसूस कीजिए।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि श्रीदेवी 1 करोड़ रुपए फीस पाने वाली पहली एक्ट्रेस थीं। हमेशा बॉलीवुड में जो हीरो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उन्हें एक्ट्रेसेस से ज़्यादा फीस मिलती है, लेकिन श्रीदेवी ऐसी पहली हीरोइन रहीं जिन्हें अपने को स्टार से ज़्यादा फीस मिली, इसीलिए उन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। बोनी कपूर से शादी हुई और शादी के 15 सालों के बाद फिल्मों में उन्होंने कमबैक किया फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से। लेकिन जब श्रीदेवी का करियर अपने उठान पर था, तभी उन्होंने बोनी कपूर के साथ कुछ फिल्में की, चांदनी लम्हे। आइए लम्हे फिल्म का आपको एक गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आज श्रीदेवी के साथ साथ वैजयंती माला की भी जन्मतिथि है। वैजयंती माला के ऊपर फिल्माए गए गीत हम आपको व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में 10:05 से सुनवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
5: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
4: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये

0: कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और

0: सम्मान प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
1: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
2: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
4: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13,00,000 से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती। भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाईकोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाईकोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians including women and children killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC All certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. We have more details on this from our correspondent.
7: The Calcutta High Court has cancelled OBC certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. A divisional bench of Justice Rajashekhar Mantha and Justice Anuj Singh said the two classifications no longer exist in the state and certificates issued under the

0: Gen Z mode, Delhi police goes kuchu puchu to warn against deadly mancha, mentions the Pioneer. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Sarah. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill referred to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Calcutta High Court cancels all OBC certificates issued under revised rules introduced by previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab pharmacy officers' recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और दमोह से खुशी हुर्रा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 से शाम 7 तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कभी कभी शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, वो समय की स्मृति बन जाते हैं, वो पीढ़ियों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, संस्कृति की चेतना को अक्षुण्ण रखते हैं और मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को जगाते हैं। एक ऐसे ही महान शब्द साधक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। उन्होंने कलम को यश पाने का साधन नहीं, समाज का ऋण चुकाने का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में गांव की पगडंडियां बोलती हैं, किसानों की पीड़ा स्वर पाती है, मानवीय रिश्तों की ऊष्मा स्पंदित होती है और भारतीय जीवन दर्शन अपनी सरलता और संपूर्ण गरिमा के साथ आकार लेता है। उन्होंने भाषा को अलंकारों से नहीं, आत्मीयता से सजाया, शब्दों को वैभव से नहीं, संवेदना का सौंदर्य दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक, गद्यकार, संपादक और भाषा संस्कारक के रूप में अमर है। वो एक उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक होने के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी थे। उन्हें हिंदी गद्य का अनुपम शिल्पकार और भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1960 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहबाद जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बचपन में पिता से सुनी राम कथा और ग्रामीण जीवन ने उनके भीतर लोक संस्कृति और बोली भाषा के संस्कार बो दिए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जहां उन्होंने कैथी लिपि, हिंदी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक उच्च

शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और बनारस की अदालत में क्लर्क की नौकरी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद ही आरा में हिंदी शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य आरंभ किया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती। यूं भारत भूमि की आजादी का स्वप्न उनके भीतर जागने लगा।

इसी बीच साल आया सन 1921। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी की पुकार पर आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। इस तरह अब उनका जीवन पत्रकारिता और साहित्य को पूर्णतः समर्पित हो गया। वो केवल संपादक नहीं बल्कि संपादन संस्था के रूप में स्थापित हुए। सन 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित मारवाड़ी सुधार नामक पत्रिका से उनकी संपादकीय यात्रा आरंभ हुई। सन 1923 में वो ऐतिहासिक मतवाला मंडल के सदस्य बने। कलकत्ता से निकलने वाले राष्ट्रीय पत्र मतवाला के संपादकीय मंडल में वो निराला जी के साथ शामिल थे। मतवाला के नामकरण और इसके जुझारू तेवर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को तीखा स्वर दिया। लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादन विभाग से भी वो जुड़े और यहीं मुंशी प्रेमचंद के निकट सहयोगी बने। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की भाषा को तराशने और उसके संपादन का श्रेय शिव पूजन सहाय जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें उर्दू प्रभावित वाक्य विन्यास का परिष्कार किया तथा देवनागरी मानकीकरण के साथ कथा गद्य को प्रवाह देने में योगदान दिया। सन 1926 से 1936 के बीच अपने काशी प्रवास के दौरान वो जयशंकर प्रसाद के मित्र मंडल में शामिल हुए और जागरण पत्रिका का संपादन किया। प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी की पांडुलिपि के संशोधन का ऐतिहासिक गौरव भी शिवपूजन सहाय जी को प्राप्त है। उन्होंने इसमें क्लिष्ट तत्सम भाषा की व्याकरणगत संगति, छंद सुधार और मुद्रण योग्य पांडुलिपि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निराला जी की अनेक बिखरी हुई पांडुलिपियों के संपादन और मतवाला के लिए अनेक अनगढ़ गद्य को निखारने का कार्य किया। इस तरह उन्होंने हिंदी के तीन युग पुरुषों की कृतियों को संवारा लेकिन स्वयं सदैव नेपथ्य में रहे। लेकिन सच यही है कि यदि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इतना प्रांजल हुआ, यदि निराला जी का काव्य शिल्प मतवाला के माध्यम से स्थापित हुआ और यदि कामायनी जैसी अमर कृति इस रूप में सामने आई, तो इसमें शिव पूजन सहाय जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमन ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिव जी ने लिखा कम लेकिन कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में शिवपूजन सहाय एक माली थे, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे। उनकी बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय नेपथ्य के महानायक के रूप में स्थापित होते हैं।

सन 1934 से 1939 तक दरभंगा के लहरिया सराय स्थित पुस्तक भंडार से जुड़कर शिव पूजन सहाय ने संपादन का कार्य किया तथा बाल पत्रिका बालक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1939 से 1949 तक वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। यहाँ वो 10 साल तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। उनके लिखे आरंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन जी का मानना था कि साहित्य केवल बुद्धि का विलास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार तथा समाज का दर्पण है। उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। वो ठेठ देहाती मुहावरों, कहावतों और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इतनी चतुराई से करते थे कि भाषा में अलौकिक तरलता आ जाती थी। उनकी लेखन शैली में दृश्य रचने की अद्भुत क्षमता है। वो शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक स्वयं को उस परिवेश का हिस्सा महसूस करने लगता है। आचार्य शिव पूजन सहाय के लेखन की एक

विशेषता ये भी है कि वो गंभीर से गंभीर विषयों में भी सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य का पुट मिलाकर भाषा को बोझिल होने से बचा लेते हैं। वो भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क थे। उनका गद्य न तो संस्कृत की जटिलता से दबा हुआ था और न ही उर्दू फारसी का अतिशय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। ये हिंदी का अत्यंत परिमार्जित और प्रांजल रूप था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, विभूति, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृतिशेष, हिंदी भाषा और साहित्य आदि। सन 1926 में प्रकाशित उनकी कृति देहाती दुनिया को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसमें गांव केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं जीवंत पात्र सा सामने आता है। खेत, मेले, लोकगीत, रिश्तों की ऊष्मा और बाल मन की सहजता, सब कुछ इतनी आत्मीयता से चित्रित है कि पाठक स्वयं उस गांव का निवासी बन जाता है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, रहस्य ये है कि जब हम लोग रामायण पाठ की कथा सुनते सुनते ऊंघने लगते, तब बाबूजी मुस्कुराकर पोथी बंद कर देते और हमें दुलार कर सुला देते। माता के आंचल में छिपकर सोने में जो सुख और सुरक्षा मिलती थी, वो संसार की किसी राज सिंहासन पर नहीं थी। ये केवल एक स्मृति नहीं, भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक भावचित्र है। सहाय जी ने संस्मरणों की विधा में भी अमूल्य योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह वे दिन वे लोग केवल स्मृतियों का संकलन नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण अत्यंत आत्मीयता से किया है। निराला जी के विषय में वो लिखते हैं, निराला जी के पास जब जेब में पैसे होते थे तो वे किसी भूखे नंगे को अपनी कुर्ती तक उतार कर दे देते थे, और जब शाम को उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस भी नहीं बचती थी, तब वे अपनी कालजयी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाते हुए अंधेरे कमरे में बैठकर हंसते थे। ऐसे थे हमारे निराला। इस छोटे से संस्मरण में केवल निराला जी का व्यक्तित्व ही नहीं, शिवपूजन जी की संवेदनशील दृष्टि भी झलकती है। देश की आजादी के बाद सन 1950 से 1959 तक वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक पत्र के संपादक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 21 जनवरी सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान साहित्य सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट देगी। भोपाल के बड़े तालाब में आज नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से बोट क्लब से यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से अधिक नावों पर युवा, खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में तीसरा स्थान मिला है। भोपाल में आज से हर घर तिरंगा और विभाजन विभिषेक का स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई जा रही है। श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज महापौर मालती राय करेंगी। और मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, हम सब अपने जीवन में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, वो पहचान जो हमारे बाद भी लोग हमें याद कर सकें उस पहचान के माध्यम से, यानी अपना एक अलग अंदाज हो, मिजाज हो और साथ ही दोस्तों के बीच हमारी कुछ अलग सी बात हो, यानी हम जो हैं खुद को ढूंढते रहते हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं जो हमारी पहचान बन सकती हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम काफ़ी लंबे समय तक मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरी भूमिका इस समाज में क्या है, मूल्य क्या हैं, मेरे पसंद नापसंद क्या है, दूसरों की अपेक्षाओं पर मैं किस तरह से खरे उतर रही हूँ, ये सब हम लगातार सोचते रहते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। बार बार हमें लगने लगता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता, पहचान नहीं बन पाती हमारी, अलग सा व्यक्तित्व नहीं लगता हमारा, हमें भीड़ का हिस्सा महसूस करते हैं और धीरे धीरे इस तरह भीतर से खालीपन महसूस होने लगता है। लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद आता है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्यों है? हम लगातार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं और उसमें अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। वैसे कुछ हद तक आइडेंटिटी क्राइसिस होना अच्छा भी है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद ये हमारी व्यक्तित्व का बुरा पहलू हो जाता है। यदि हम आइडेंटिटी क्राइसिस के एक छोटे लेवल पर हैं तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं, अपने आप की खोज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम आइडेंटिटी क्राइसिस के जाल में फंस जाते हैं और हम अपने आप को दूसरों की निगाहों में ढूंढते रहते हैं, यानी दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों की मान्यता चाहते रहते हैं। दूसरों की मान्यता के आधार पर अपने व्यक्तित्व को तय करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। खुद को पहचानिए, जैसे आप हैं उस तरह अपने आप को शोकेस कीजिए। ये तो थी अपने व्यक्तित्व को गढ़ने की बात, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने की बात। आइडेंटिटी क्राइसिस के इतर एक और कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान में, वो है आइडेंटिटी ट्रैप। यानी यदि आप कोई मशहूर हस्ती हैं तो भी आप अपने उस व्यक्तित्व के चंगुल में फंस जाते हैं, उससे इतर कुछ नहीं सोच पाते। आपने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा होगा, वो अपनी जो सिनेमा पर उन स्क्रीन पर जो उनकी प्रेजेंस है या स्क्रीन पर जो उनका व्यक्तित्व दिखाया जाता है, सामान्य ज़िंदगी में भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं या वैसा ही दिखना बोलना चलना चाहते हैं। यही है आइडेंटिटी ट्रैप। कुछ लोग अपने पद के मोह में इतने फंस जाते हैं कि वो सामान्य ज़िंदगी में भी उसी कुर्सी पर, उसी पद पर बैठे रहते हैं। सामान्य ज़िंदगी और व्यावसायिक ज़िंदगी में फ़र्क नहीं महसूस कर पाते, यानी आपकी पहचान आपको इतना जकड़ लेती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। दूसरे, आपके आसपास के लोग आपके इसी आइडेंटिटी ट्रैप की वजह से आपसे दूर होने लगते हैं। ये आइडेंटिटी ट्रैप आपकी अपनी बनाई हुई पहचान में इस कदर फंस जाना है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगे। एक डायलॉग याद होगा आपको, हम शहंशाह अकबर हैं, तुम क्या चीज़ हो। तो ये शहंशाह अकबर अपने आप को महसूस करने लगना
और सबको नाचीज समझ लेना ये भी आइडेंटिटी ट्रैप है। आइडेंटिटी ट्रैप का एक और बहुत महीन सा पहलू है, वो ये कि इस काम में तो हमें महारत है, ये काम तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, लेकिन क्या दूसरा कोई काम कर पाएंगे, इससे अलग कुछ सोच पाएंगे? ये जो अपने ऊपर अविश्वास हो जाता है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। फिर यदि कोई गलती हो जाए तो अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हुए आप कह देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। इसका बोझ भी बहुत बड़ा है। मान लीजिए कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसके सामने तमाम तरह की जिम्मेदारियां आती हैं और वो बड़ी कुशलता से उन सब जिम्मेदारियों को समेट कर उनको हल करता हुआ चलता है, उनको उठाता हुआ चलता है और इस तरह बोझिल हो जाता है। लगातार जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाए रखने की वजह से वो ओवरबर्डन होता रहता है, अपने आप को नेग्लेक्ट करता रहता है। ये नेग्लिजेंस भी इसी आइडेंटिटी क्राइसिस का एक हिस्सा है। मैं बेहद स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रांग महसूस कर लेना भी आइडेंटिटी ट्रैप है। और फिर ये अपनी पहचान बनाकर उसमें फंस जाना, ये आपकी चॉइस नहीं होती, ये आपको लिमिट कर देती है, आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आप अपनी आइडेंटिटी के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोच पाते। यदि आप एक अच्छे सिंगर हैं तो कहीं भी जाने पर आपसे गाने की फरमाइश ही होगी, आपसे कोई डांस नहीं करवाएगा। चाहे आपका लाख मन करता रहे कि आज मैं डांस भी करूँगा या आज मैं खाना भी बनाऊँगा, ये एक एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं हम, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। जो जिस छवि में हम कैद हैं ना, उस छवि को छोड़कर कुछ नया करने के की इच्छा भी हो तो हम नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैप में फंसने से बेहतर है कि हम किसी भी छवि में अपने आप को कैद न होने दें और जीवन के हर रस का अनुभव लेते रहें।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, अभी कल हम मॉल गए थे, वहाँ लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार लिफ्ट का बटन दबाए चले जा रहा था। हालांकि लिफ्ट तभी आती जब उसे आना था, बार बार लिफ्ट का बटन दबाने पर लिफ्ट के जल्दी आ जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी अधीरता या आदत की वजह से उसने कई बार वहाँ खड़े खड़े लिफ्ट के बटन को प्रेस कर दिया, और एक नहीं लगभग सभी लिफ्ट्स के बटन के साथ वो बारी बारी से ऐसा कर रहे थे। और ऐसा करते वहाँ खड़े कई सारे लोग उन्हें देख रहे थे। इतने सारे लोगों की भीड़ में वो अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे एक अधीर व्यक्ति के रूप में। इंतज़ार तो सभी कर रहे थे, लेकिन उतनी अधीरता किसी के अंदर नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनकी इस हरकत पर एकाध लोग मुस्कुराए भी। एक बार बटन दबाना तो प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार से अधिक बार यदि आप बटन दबा रहे हैं लिफ्ट का, तो ये प्रक्रिया नहीं बल्कि आपकी अधीरता, आपकी इम्पेशेंस को दर्शाता है। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी काम को बार बार करते हैं जबकि हमें प्रोसेस में लगने वाला समय पता होता है। आपने एक एग्जांपल बताते हैं, यदि आपने किसी भी सोशल साइट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो अब एक्स है, इस पर कोई पोस्ट डाली और हर 5 मिनट बाद आप नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, हर एक कमेंट को पढ़ रहे हैं कि इस पर कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए, ये देखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी अधीरता बताती है। आपको यदि कुछ व्यक्त करना भी है सोशल मीडिया पर, आपने अपने मन की बात कह दी, थोड़ा समय दीजिए। आप दूसरों के विचार जानना चाहते हैं, ये बात यकीनन सत्य है, लेकिन दूसरों के विचार वहाँ तक आने में समय लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम WhatsApp पर चैट करते समय इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दूसरा हमारी बात का क्या जवाब देगा। आपको अब तो WhatsApp पर एक आइकन भी दिखाई देने लगता है कि someone is typing या replying, ऐसा करके, और कुछ डॉट्स दिखाई देते हैं। आप तब तक उसे घूरते रहते हैं जब तक उसके जवाब वहाँ पर टाइपिंग करने के बाद आ नहीं जाता। आप तसल्ली रखिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, दूसरा कोई काम करने लगिए, और यदि इतनी अधीरता है तो फ़ोन लगा करके बात कर लीजिए। ये जो अधैर्य है हमारे अंदर, ये हमारे व्यक्तित्व का एक नेगेटिव पहलू है। इस अधैर्य को ख़त्म करना हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा। कभी कभी इस तरह से भी हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रक्रिया का हिस्सा खुद को अपने आप ही बनाना। कभी कभी अपने आप को इन सब चीज़ों से, जो चीज़ें आपको अधीर करती हैं, उनसे दूर करिए। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में चीज़ें आती जाएंगी और आप इस अधीरता से थोड़ा सा दूर होते जाएंगे और धैर्य आपके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोता साथी, एक और आदत हम भूलते जा रहे हैं, किताब पढ़ने की। अब आप कहेंगे किताबें आपके शहर में मिलती नहीं हैं। यकीनन नहीं मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स ऐसी हैं जो किताबें बेचती हैं। आप अपने पसंद की किताबें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। किताबों के बंद होने के पीछे भी, किताबों की दुकानें बंद होने के पीछे भी हम ही हैं। हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, ख़रीदना छोड़ दिया। ऐसे में कोई भी दुकानदार घाटे का सौदा क्यों करेगा? यदि आप किताबों की दुकान पर जाकर के एक्स्ट्रा करिकुलर किताबें मांगेंगे, यानी वो किताबें जो कोर्स की किताबें नहीं हैं, तो दुकानदार मार्केट देखकर किताबें अपने यहाँ रखने भी लगेंगे। आप खुद सोचिए, आपके शहर में कितनी किताबों की दुकानें हैं जो आपको आपकी पसंद की किताबें उपलब्ध कराती हैं। ये किताबें सिर्फ साहित्यिक नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं। तमाम मैगजीन्स निकलना बंद हो गईं सिर्फ इसलिए कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, अभी फ़िलहाल अखबार पढ़ने की हमारी आदत बनी हुई है, लेकिन उसमें भी हमें क्या चाहिए ये हमने बताना बंद कर दिया है। इसलिए अखबार अब अपने हिसाब से निकलते हैं। उनमें जो भी खबरें होती हैं उनमें ज़्यादातर विज्ञापन होते हैं। हमें अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ना सीखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस मोबाइल ने हमारे हाथों से किताब जो छुड़वा दी है उसको वापस पकड़ने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जानते हैं किताबें पढ़ना ज़रूरी क्यों है? किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती हैं। दोस्त किस तरह से? जिस तरह दोस्त हमें हाथ पकड़कर मुश्किलों से बाहर निकालता है, वैसे ही किताबें भी करती हैं। उनके भीतर जो विचार कैद होते हैं, जो जज्बात कैद होते हैं, जो शब्द भंडार संचित होता है, वो हमें अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। हमारा कितना भी तनाव क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियों से हम जूझ क्यों ना रहे हों, एक अच्छी कविता, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा उपन्यास हमें उस मुश्किल से बड़ी आसानी से बाहर निकाल देता है। तो किताबों का हाथ पकड़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि अच्छे विचार, अच्छी बातें आपको कितना खुश रख सकती हैं।

श्रोताओ, दिल तो हमारा भी नहीं भरा है आपसे बातें करते रहने का, अभी भी मन है, लेकिन फिलहाल वक्त की इजाज़त ये है कि आप जाएं और अगला कार्यक्रम आए। तो फिलहाल जाने की इजाज़त दीजिए तुलिका को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं यखलेश बघेल का ध्रुपद गायन। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं जगत नारायण शर्मा। आइए सुनते हैं यखलेश बघेल का राग भैरव में ध्रुपद गायन।

यखलेश बघेल से अभी आप ध्रुपद गायन सुन रहे थे। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे जगत नारायण शर्मा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।

पसान सहित जिला मुख्यालय अनूपपुर में तिरंगा रैलियां जोश और उत्साह के साथ निकाली जा रही हैं। रैलियों के दौरान भारत माता की जय के घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया है। जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। देशभक्ति के नारों और गीतों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने हर घर तिरंगा अभियान की गतिविधियों को निरंतर आयोजित करने तथा कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल होंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा शासकीय सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित स्थान पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 14 अगस्त को ITI कैंपस अनूपपुर में द्वितीय शिविर आयोजित होगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। उप संचालक कृषि अजित कुमार ने जिले के किसानों से विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए बिना विलंब अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। वहीं नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने जिले के चारों विकासखंड अनूपपुर कोतमा पुष्पराजगढ़ और जैथरी स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने 10 अगस्त को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक को लेकर विभागवार लंबित प्रकरणों और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने CM हेल्पलाइन जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उसकी समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी टीम को सक्रिय रखते हुए कार्यों की नियमित निगरानी और दैनिक प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए। 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय से NIC सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 24,130 हितग्राहियों के खातों में 1,44,78,000 रुपए की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संबोधन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। वर्षा ऋतु में मौसमी और जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। CMHO डॉ. अलका तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में सर्दी खांसी बुखार वायरल संक्रमण दस्त उल्टी और टाइफाइड सहित जलजनित और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही नहीं बरतने और स्वयं दवा लेने के बजाय निकटतम शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सीय परामर्श लेकर उचित उपचार लेने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थलों ऐतिहासिक धरोहरों संस्कृति नदियों झरनों मंदिरों किलों और महलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय उच्चतर

0: माध्यमिक विद्यालय लपटा की टीम ने प्राप्त किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी भोपाल है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोता सुने अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम है व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोता साथियों, आज है वैजयंती माला का जन्मदिन, तो आज ये कार्यक्रम हम उन्हीं के नाम करते हैं। उनके ऊपर फिल्माए गए कुछ गीत हैं जो हम चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं।

अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म गंगा जमुना से। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का, और इस गीत को वैजंती माला के ऊपर फिल्माया गया था। सुनना चाहते थे आप सब, आप हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साहिद साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, मेघा, राशि और अनुराग मोहन, सहावर रोड गंजडंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही, और मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और उनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जलंधर से अशोक जाटव। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, नौशाद का संगीत बद्ध किया और वैजंती माला पर फिल्माया गया फिल्म साथी का ये गीत।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम है व्हाट्सएप फरमाइश। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश अब हम पूरी कर रहे हैं। आप हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोहन ताइड़े, मोहन करांगले, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने, पीएस नावकर, गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। इस गीत को सुनना चाहते हैं गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, प्रीतेश संधू और मैक्स। चकिया बाजार चंदौली से सुंदरलाल जायसवाल, सुमन जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल और गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म नागिन का ये गीत, जो फिल्माया गया है वैजंती माला पर। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है इसे हेमंत कुमार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा और गिरीश मिश्रा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, और इस गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मल्लोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर आशा भोसले का गाया फिल्म लीडर का ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान और शम्मी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, पिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया फिल्म कठपुतली का ये गीत। सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म को अभिनीत किया है वैजंती माला ने।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप भी अपनी पसंद के फिल्मी गीत की फरमाइश भेज सकते हैं। फरमाइश भेजने के लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट करें, 9425702768, यानी 9495702768। ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं वैजंती माला के ऊपर फिल्माए गए कुछ गीत। आज वैजंती माला की जन्मतिथि है। श्रोता साथियों, कार्यक्रम का ये जो अगला गीत है इससे हमने लिया है आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव खरिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र बिजारनिया, राजपाल बिजारनिया, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म प्रिंस का ये गीत। गीतकार है हजरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री कुमारी और प्रतीक कुमार, सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म संगम का ये गीत, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और उनका पूरा परिवार। और आप हैं मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन, आवाज़ें लता मंगेशकर और भूपिंदर की।

वैजयंती माला के ऊपर फिल्माया गया है। सुनना चाहते हैं कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख। चरणडोगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू। और आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म नया दौर का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

0: फिल्म नया दौर के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश समाप्त हुआ। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमारे केंद्र से सुबह 10:05 से 11 बजे तक सुनवाया जाता है। इस कार्यक्रम में श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनते हैं। यदि आपको भी अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनना है तो हमें मैसेज करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9425707268। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया है कि अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। भोपाल में वोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में अब से कुछ देर में 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में महापौर मालती राय ने आज हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं प्रदेश भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13-17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति रक्षा कवर की है।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी एक विषय के ऊपर और सुनवाते हैं आपको बहुत ही मीठे मीठे गीत। कार्यक्रम में आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कबाड़, कचरे या किसी भी अनुपयोगी वस्तु से कुछ अच्छा, उपयोगी, सुंदर या कलात्मक बनाना। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
2: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
3: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
2: क्या करते हैं हरविलास जी?
3: खेती किसानी करता हूँ।
2: अच्छा अच्छा, अभी क्या चल रहा है?
3: इस समय बाजरे की फसल खड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी फसल है।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पानी वानी ठीक से गिर रहा है?
3: बहुत ही अच्छा गिर रहा है, खेती के काबिल गिर रहा है।
2: अरे वाह, तो कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जहां आज का हमारा विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़ी चीज से कुछ अच्छा, सुंदर, कलात्मक बनाना। तो ऐसी कोई चीज आपने कहीं देखी हो या आप अपने घर में कभी कर चुके हो, आपके परिवार में किसी ने की हो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे।
3: कुछ ऐसी मैंने देखे हैं, अपने घर में ही देखे हैं महोदया, जैसे कोई रद्दी कागज या पुट्ठा वगैरह होते हैं, जो लोग पंखा बीजना बना लेते हैं, कुछ सजावट की चीजें बना लेते हैं, बल्ब वगैरह निकाल के उन्हें रंग भर के सजावट की चीज बना लेते हैं
2: जी।
3: इस तरह की चीजें देखी हमने अपने घर में।
2: कैसा लगता है आपको देखकर?
3: बहुत ही अच्छा लगता है, अनुपयोगी चीजों को उपयोग में लाना दोबारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
2: आपने भी कभी बनाया इस तरह का कुछ, या आपके परिवार में किसी ने?
3: नहीं, मेरे परिवार में तो बनाया, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया कुछ ऐसा।
2: अच्छा, कभी कोशिश करके देखिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे।
2: अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो आपको याद रह गई हो कि अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बना दिया?
3: हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, एक छोटा सा बच्चा था
2: जी,
3: 12-14 साल का, उसने बनाया था
2: जी
3: फ्यूज बल्ब लेके, और जाने किस तरह उसने क्या चीज लेके रेडियो में से क्या जोड़ के उसने बल्ब बना दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था मुझे।
2: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हरविलास जी आपसे बात करके। कार्यक्रम में इसी तरह फोन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, किनसे बात हो रही है?
1: हाँ मैडम जी, ग्राम कनिया विकासखंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू से बात कर रही हूँ मैडम जी।
0: ध्रुवाराम साहू जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आज त्योहार भी मना रहे हैं, हरियाली त्योहार।
0: कौन सा त्योहार मना रहे हैं?
1: हरियाली का त्योहार, जिसको अपने क्षेत्रीय भाषा में हरेली का त्योहार बोलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, क्या होता है इसमें?
1: इसमें ये होता है कि इस त्योहार के आते तक जो किसान है खेतों में रोपा वगैरह है वो सभी काम पूरा कम पूर्ण हो जाते हैं, और आज के दिन जो किसान होते हैं वो अपने जो हल वगैरह हैं, उपकरण है, कृषि उपकरण, उनकी पूजा पाठ करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और तरह तरह की पकवान भी बनाते हैं जी, जैसे चीला हो गया, इधर ठेठी खुरमी, इस तरह का जो बोलते हैं बड़ा वगैरह, इस तरह का त्योहार बनाते हैं मैडम जी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी आपके यहाँ होगी ये सब पूजा पाठ या फिर अभी चल रहा है?
1: नहीं नहीं, अभी चालू है मैडम जी, अभी तो शुरुआत है, बस जो पकवान बनाने का है ना वो कार्यक्रम चालू है अभी।
0: अच्छा।
1: और सबसे एक विशेष बात यह है कि जो बांस का जो गेड़ी बनाने का काम करते हैं बच्चे लोग, इसमें नृत्य भी करते हैं, चलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, वाह वाह वाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस त्योहार की, आपको और आपके परिवार को।
1: आपको भी मैडम जी, और सुनने वाले हमारे जो सभी श्रोता मित्र हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हर दिन त्योहार की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय मैं आपको बता दूं, आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरा कबाड़े किसी अनुपयोगी वस्तु से कुछ बहुत ही सुंदर सा कलात्मक या सजावटी सामान बनाना। तो ऐसा कुछ आपने कभी किया हो या फिर आपने किसी को करते हुए देखा हो?
1: हाँ,
0: तो हम इसके बारे में बात
1: क्या है, जो अपने पास कागज है तो कागज को क्या है पानी में भिगा करके टोकरी बनाए थे मैडम जी हम लोग।
0: अच्छा, पानी में भिगो कर, मतलब किस तरह से?
1: पानी में क्या है उनको भिगा दिए 2 दिन तक, उसके बाद क्या है कागज एक प्रकार से पूरा विलय हो जाता है उसमें पानी में
0: जी,
1: और किसी जो पात्र जो टोकरी बनाने था टोकरी डाल दी, पुराने वाली जो टोकरी है उसमें, तो जो कागज होते हैं उसी के अनुरूप ढल जाते हैं, उसी के अनुरूप आकार निकल जाता है मैडम।
0: अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर उसका इस्तेमाल भी किया आपने?
1: हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल करते थे मैडम जी।
0: अच्छा, और इसके अलावा कोई और वस्तु जो आपने किसी और को बनाते हुए देखी हो?
1: अब पुराने वस्तु ऐसे तो है मैडम जी, इधर बांस वगैरह से ऐसे तो कलात्मक कृतियां बनाई जाती है
0: जी।
1: हाँ बनाते ही हैं, जैसे सूप वगैरह बनाने हैं, टोकरी बनाना है, वो तो करते ही हैं
0: जी।
1: हाँ, और एक और है मैडम जी, जैसे हम लोग इधर अभी अभी चलन में है, कुछ देखने को मिलता है, जैसे खुमरी बोलते थे हम लोग, जो मोलाइन के पत्ते होते थे उसको डाल के जैसे छाता नहीं होते थे, छाता से बढ़िया जो रोपा लगाने वाले हैं या फिर जो अहिर जाति के हैं, गाय चराने वाले, मवेशी चराने वाले, वो उसको उपयोग करते हैं मैडम जी।
0: पत्तियों से बना छाता?
1: हाँ, पत्तियों से बना छाता, वो क्या है जो बांस का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो पत्ते होते थे मोलाइन के जो पत्ते बोलते हैं
0: जी,
1: उसको डाल के रखते थे।
0: अरे
1: वाह, उपयोग करते थे मैडम जी। क्या मड़ई मेला जब होता है ना, तो उसको जो हमारे जो अहिर जाति के हैं, राउत जाति के जो लोग भाई लोग हैं
0: जी,
1: वो नृत्य करते हुए जाते हैं मैडम जी, मतलब ये भी एक संस्कृति में शामिल है हमारे यहाँ का
0: जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा ध्रुवाराम जी आपसे बात करके, आपके त्योहार की हरेली त्योहार,
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम जी,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मध्य प्रदेश है, भोपाल है, वहाँ कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और समय समय में क्या है विषय परक जो जानकारियां हैं, और कहा जाए तो मैडम जी जो आकाशवाणी है वो हमारा संस्कृति का रक्षक भी है, परिचायक भी है, कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, उत्सव हो, उससे पहले हमको जानकारी मिल जाती है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका
1: हेलो।
0: स्वागत है
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: योगेश जांगरे।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: क्या करते हैं योगेश जी?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: खेती बाड़ी का काम है तो अभी क्या लगाया हुआ है?
1: धान लगाया है।
0: धान लगाया हुआ है, अच्छा जी। अच्छा, कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारी, जहाँ एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़े वस्तु का पुनः उपयोग करके इस्तेमाल योग्य बनाना, उसे कुछ सुंदर सा कलात्मक बनाना।
1: नहीं, हम तो प्रत्यक्ष किए हैं, क्योंकि जिस समय डीएड की पढ़ाई कर रहे थे
0: जी
1: तो उसमें तो होता है ही था कबाड़ से जुगाड़।
0: हाँ
1: तो ग्रुप में करते थे और काफी चीजें उनसे सीखे हैं, और घर में भी जैसे जैसे हमारे यहाँ महिलाएं हैं
0: जी,
1: तो चूड़ी वगैरह का बढ़िया साज सज्जा बनाती है, एक्स्ट्रा जो कपड़े वपड़े बच जाते हैं उनका अच्छे से बना लेती हैं, या डब्बा वगैरह जो होते हैं तो मतलब इस तरह से उपयोग हो ही जाता है। जैसे चूड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, या थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो उनको मस्त डिजाइन बना के दीवार वगैरह में भी लगा देते हैं 100 पीस के तौर पर।
0: अच्छा
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके योगेश जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: रजनी सोनी मैडम, बहुत दिनों के बाद मैं फोन लगा, अब तो टाइम ही बदल गया है तो फोन ही नहीं लगता।
0: ओहो रजनी जी, आप कोशिश करते रहा कीजिए, जैसे आज लग गया है वैसे और भी लग जाएगा
1: जी।
0: कहाँ से बात कर रही है रजनी जी?
1: हम बालाघाट जिला गांव भिड़ी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा क्या करती हैं रजनी जी?
1: हम हाउस वाइफ हैं दीदी, घर का अपना काम तो बहुत लगता है।
0: रजनी जी, आज का कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय है हमारा जो है कबाड़ से जुगाड़िया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: जैसे साड़ी निकलती है अपनी तो अपन पायमेटी बनाते हैं, ये जैसे पैर पोछने वाली जैसे अपन बनाते हैं, क्रूसिया से बना लिए, जैसे ब्रश से बनाते, ब्रश से भी बनती है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: हमारे यहाँ क्या है, जैसे साड़ी वाड़ी निकलती है, जैसे नई साड़ी है अपने को उपयोग नहीं करना है तो हम उसका भी बना लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा तो और क्या क्या बनाते हैं, मतलब साड़ी के पोछे के अलावा भी कुछ कुछ बनाते हैं?
1: नहीं नहीं जैसे पाईमेटी बनाना, जैसे क्रूसिया से बनाते हैं, या फिर अपने बहुत से अपने जैसे ब्रश में भी बनती है, ब्रश से भी बना लेते हैं।
0: ब्रश से क्या बनाते हैं?
1: ये अपने मंजन करने के ब्रश रहते हैं ना, इससे भी बनती है पाईमेटी बहुत अच्छी अच्छी
0: अच्छा
1: जी।
0: उसका क्या इस्तेमाल होता है उसके अंदर?
1: जैसे ब्रश है तो ब्रश को पीछे साइड से अपन थोड़ा सा छेदा करके, और उसमें एक अपने जैसे साड़ी की एक जो रहती है रस्सी, उसको बांध लो एक छोर को, और ऊपर साइड से जैसे अपन ये इसमें बनियान बनाते हैं उसमें ऐसा उल्टी से फंदा नहीं डालते क्या?
0: अच्छा,
1: फंदा डालते हैं और फिर वो फंदा दोनों हाथ से दोनों तरफ डालते हैं दो गोला।
0: अच्छा।
1: से फिर उसके बाद उसको खसकाते जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे गोल गोल गोल गोल करके अपन इसको सिलाई लगा लो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह,
1: पाईमेटी बन जाती, फिर जैसा कार की बनाना वैसी बन जाती।
0: अरे वाह रजनी जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने दी
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, मेरा नाम मैडम जसराम जाटव, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम, बढ़िया हैं।
0: अच्छा, कार्यक्रम का विषय मैं आपको बता देती हूँ। आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या कबाड़ से जुगाड़। ऐसी कोई भी पुरानी घर में पड़ी हुई वस्तु से कुछ नया या बहुत सुंदर सा कुछ बनाना।
1: कुछ लोग क्या है, जो खराब चीज होती है तो उसका कुछ खिलौना बना लेते हैं, कुछ बना लेता है, ऐसा होता है मैडम।
0: अच्छा, और इसके अलावा कुछ और देखा है आपने करते हुए किसी को?
1: पानी का जो बॉटल होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको कट करके नहीं इसपे गुड़िया भी बना लेते हैं। गुड़िया बना के इसपे अच्छा लगता है, दिखने में अच्छी लगती है वो।
0: पानी की बोतल से?
1: हाँ, पानी की बोतल से गुड़िया बना लेते हैं। इसपे क्या है, इसको चीट चीट गए तो इसपे बना लेते हैं मैडम।
0: हाँ, और ये तो बड़ा अच्छा है ना ऐसा करना, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता। जो बाहर पानी की बोतलें मिलती हैं वो तो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कचरे में ही जानी होती हैं। उससे अगर इस तरह का कुछ बना ली कोई तो कितनी अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है।
1: हाँ मैडम, अच्छा लगता है। क्या प्लास्टिक अपन फेंकते हैं तो भी क्या, बारिश का पानी रुक जाता है, इससे जमीन में पानी नहीं जाता।
0: जी जी,
1: तो हम तो मैडम क्या आस पास देखते हैं तो हम तो समझाते हैं जी लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक को फालतू नहीं फेंकना चाहिए, कचरे की वहाँ फेंकना चाहिए।
0: जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जसराम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
1: हाँ मैडम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी, चंद्रवान नामदेव ग्राम पोस्ट देरी डिस्ट्रिक्ट छतरापुर एमपी से बात कर रहे हैं। दीदी
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो ठीक है, आप कैसी हैं मैडम?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं?
1: हम सिलाई का काम करते हैं दीदी।
0: अच्छा, क्या बनाते हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी?
1: हम पेंट आई पेंट सिलते हैं।
0: पेंट सिलते हैं आप?
1: हाँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चंद्रबान जी, कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं, तो आज का विषय मैं आपको बता दूं।
1: हाँ।
0: आज का विषय है कबाड़ से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें हम कोई भी पुरानी रखी हुई वस्तु जो घर में इस्तेमाल में नहीं आ रही उसका कुछ नया बना लेते हैं और उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं।
1: हमारे यहाँ तो आते हैं कई दास, उनको बेच देते हैं और हमारा बच्चा बना लेता है कबाड़ में से कुछ न कुछ नया सामान की जुगाड़ बना लेता है। उसने एक जो ऊपर बनाया है जैसे रेडियो था, उसकी चुम्बक, उसकी मशीन से उसने एक बात चिप डाल ली मोबाइल की तो बजता है ऊपर।
0: अच्छा, मतलब पुराना जो खराब रेडियो था उससे उन्होंने स्पीकर जैसा कुछ बना लिया।
1: हाँ, ऊपर बना लिया उसकी चुम्बक भाई, उसकी बाद मशीन होती है जो टाँके लगी जाते हैं। हमने नया रेडियो लिया है, बेकार होगा तो उसे बोलो जब चुम्बक निकाल के हम ऊपर बना ले रहे।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, इसके अलावा उसने एक बहु बनाया था, क्या बोलते ये और डब्बा बना ले तो चकाका लगा कर चला उस रात,
0: पुराने डब्बे में पहिए लगा करके उसको गाड़ी जैसा बना लिया।
1: हाँ,
0: खिलौना हो गया।
1: हाँ, खिलौना हो गया उसके लिए।
0: कितना बड़ा है आपका जो बच्चा है?
1: हमारा बच्चा 10 साल का है।
0: अच्छा, 10 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो से अपना दूसरा स्पीकर जैसा बना लिया।
1: हाँ।
0: क्या नाम है आपके बच्चे का?
1: हमारा बच्चे का नाम है कृष्ण नामदेव।
0: कृष्ण नामदेव।
1: हाँ, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से ट्राई कर रहा है कि फोन लगा लिया जाए, भोपाल में व्यस्त बता रहा
0: है। जी जी जी जी, बहुत सारे कॉलर्स का फोन आता है, पर बहुत अच्छा किया आपने लगाया फोन, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हमको भी, हम सब आकाशवाणी से जो है भोपाल छतरपुर का था, हम दिन भर रेडियो सुनते हैं। अभी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे तो फोन रिसीव हो गया, सुनने की पहले बात कर ली जाते, अभी बंद कर दिया था, बात भाई जा तो क्या चालू कर ले रेडियो।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं, हमें फोन करते हैं। और
1: आप लोगों की आवाज बहुत बढ़िया लगती है, बोलने का तरीका इतना बढ़िया लगता है कि दिन भर अपना सिलाई करते रहे, दिन भर रेडियो सुनते रहे।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं
0: जी? नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मैं रतलाम से, मैं सरला चावड़ा बोल रही हूँ।
0: सरला चावड़ा जी, रतलाम से।
1: जी हाँ,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ साहब, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ,
1: बहुत बढ़िया
0: जी। क्या करती हैं सरला जी?
1: जी मैं टीचर थी, अब मैं टीचर नहीं हूँ, पहले टीचर थी, अब रिटायरमेंट हो गया मेरा।
0: अच्छा, रिटायर्ड टीचर हैं आप।
1: जी हाँ, और मैं कक्षा एक में पढ़ती थी, तब से ही मैं इंदर भोपाल की और विविध भारती की फैन हूँ 1971 से।
0: अरे वाह सरला जी, बहुत अच्छा लगता है इतने पुराने जो हमारे श्रोता होते हैं उनसे बात करने में।
1: जी हाँ
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए आकाशवाणी को।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच
0: जी। कार्यक्रम का विषय मैं आज का आपको बता दूं, कार्यक्रम का विषय है कबाड़।

0: से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: कुछ क्रोशिया से बना लेते हैं, कुछ पेयर पोस से बना लेते हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए खिलौने, उनके फ्रॉक वगैरह डिजाइन वगैरह,
0: अच्छा,
1: लेस वगैरह लगा के बना लेते हैं। एयरफोर्स बनाना छोटे बच्चों के लिए, कुछ भी मतलब उपयोग में आने वाले उनके गुड्डे गुड़िया के कपड़े वगैरह सिलना, लेस वगैरह लगा देना, छोटे भगवान के कपड़े सिल देना, उनके पोशाक सिल देना नए नए छोटे मोटे कपड़े से।
0: अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। सरला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति रक्षा कवर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में तीसरा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। भोपाल श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ये प्रदेश भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो लीजिए।

यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम गीत का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। बोल इंदिवर के हैं, संगीत है जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत फिल्म कभी कभी से आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। खयाम का संगीत है और गीत लिखा है साहिर ने। पसंद आप सभी की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की।

आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। आप सभी की फरमाइश है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनी के इस गीत की, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हैं।

0: प्रायोजित कार्यक्रम अल्ट्राटेक रवि किशन और इंजीनियर बाबू, सुनिए प्रति गुरुवार शाम 6 बजे आकाशवाणी ग्वालियर से।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें। 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

बुंदेलखंड की एक मराठा रियासत है झांसी। बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल के कीर्ति गौरव से आप्लावित एक वीर भूमि, जहां के कण कण में आत्म बलिदानी रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं रची बसी हैं, जहां हवाओं में और दिशाओं में

भारत के हृदय प्रदेश की भूमि बुंदेलखंड से छत्रपति के उत्तराधिकारी मराठों के संपर्क का सिलसिला पेशवा बाजीराव प्रथम के काल से ही घनिष्ठ रूप से चला आ रहा था। छत्रपति शिवाजी ने युवक छत्रसाल को अपनी इतिहास प्रसिद्ध भवानी तलवार सौंपी थी और छत्रसाल ने इस अनूठी तलवार की गरिमा का मान बढ़ाते हुए 52 स्वातंत्र युद्धों में आक्रांताओं को इतिहास के न्याय का मजा चखाया था। बुंदेलखंड के कवियों ने कहा

0: झांसी की रियासत इन्हीं महाबली छत्रसाल से राजा गंगाधर राव के पुरखों को मिली थी। अंग्रेजों के प्रभाव विस्तार के दौरान झांसी को भी ग्रहण लगा। पेशवा का प्रभुत्व संधि से तिरोहित हुआ।
1: झांसी के साथ हुई संधि की व्यवस्था के अनुसार रियासत के राजा गंगाधर राव थे और रियासत का कामकाज और प्रबंध कंपनी के कारिंदे चलाते थे, लेकिन गंगाधर राव झांसी के राजा थे।
0: गंगाधर राव विदुर थे और झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी तभी जन्म ले सकता था जब वे पुनर्विवाह के लिए राजी हों।
1: जन्म पत्रिकाएं मिल जाने के बाद तात्या दीक्षित ने राजा गंगाधर राव की विवाह के लिए सहमति प्राप्त की। निश्चय हुआ कि विवाह झांसी में ही होगा। मोरोपंत विठूर छोड़कर झांसी आ जाएंगे और दरबार में सामंत बनाए जाएंगे।
0: इस तरह मनु का नाता विठूर से छूटा और झांसी में उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अब न बाला गुरु की व्यायामशाला थी, न पेशवा बाजीराव के स्नेह की छाव, न राव साहब, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे बचपन के संगी साथी, न गंगा का किनारा, न बाबुल का देश।

0: सुंदर, बहुत सुंदर। नृत्य में तो तुमने अद्भुत प्रवीणता प्राप्त की है। क्या नाम है तुम्हारा?
1: रानी साहिबा, मेरा नाम मुंदर है और यह है सुंदर, ये काशीबाई, ये रही झलकारी। हम सब आपकी दासियां हैं श्रीमंत, आपकी सेवा टहल के लिए।
0: दासियों की आवश्यकता मुझे नहीं है मुंदर, मैंने अपना काम अपने हाथ से करना सीखा है।
1: ऐसा मत कहिए रानी साहिबा, फिर हमारा क्या होगा, हम तो बिना काम के हो जाएंगे। राजा महाराजाओं की तो शोभा ही दास दासियों सेवक चाकरों से बनती है। राजा गंगाधर राव ने आपकी सेवा के लिए 16 दासियां नियुक्त की हैं।
0: ये सभी मेरी 16 सखियां होंगी, बिना किसी छुटाई बढ़ाई के बराबर की मेरी सखियां।
1: सेवा टहल अगर आपको रुचिकर नहीं है महारानी, तो हम गायन और नृत्य से आपका मनोरंजन करेंगी और आपका मन बहलाएंगी।
0: लगता है झांसी में नाचने गाने का कुछ ज्यादा ही चलन है। राजा साहब की रंगशाला के चर्चे तो दूर दूर तक हैं।
1: ठीक ही सुना है सरकार ने, हमारे राजा साहब गुणों के पारखी हैं और कलाओं के संरक्षक भी। गायन, वादन, नृत्य और कविता खूब फल फूल रही है झांसी में। एक से एक गुड़ी है झांसी के दरबार में, आप देखेंगी।
0: हम देख रहे हैं मंदर, लेकिन हम जो देख नहीं रहे वो भी है कि नहीं तुम्हारी इस झांसी में?
1: वो क्या है सरकार?
0: हथियार, आत्मरक्षा के लिए हथियार। सैनिक तलवार, तमंचे, तोप, बारूद, गोले, घोड़े, इनके बिना तो राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। राजा और रियासत की शोभा तो इनसे ही बनती है।
1: शोभा के लिए ही तो है सरकार।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
1: झांसी के राज में फौज पलटन, हाथी घोड़े, हथियार और असलाह सभी कुछ है सरकार, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, सिवाय इसके कि सवारी के आगे पीछे चले शोभा के जुलूस में। महारानी
0: क्यों?
1: फिरंगियों से अपनी संधि है महारानी, फिरंगियों की फौज झांसी में रहती है, सेंत मैत में नहीं। झांसी का राज्य उनका खर्चा उठाता है, इसके बदले में उनकी फौज राज्य की रक्षा के लिए तैनात है।
0: तुम्हारे राजा साहब को तो फिर कुछ करना नहीं होता होगा, मौज करते होंगे।
1: करना क्यों नहीं होता रानी साहिबा, राजकाज के कुछ कम झंझट होते हैं, वो राज करते हैं। रियाया की देखभाल, न्याय, बंदोबस्त, उनकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, राजा के लिए मौज की फुर्सत ही कहाँ है।
0: राजा की रंगशाला के चर्चे दूर दूर तक हैं, वहां क्या होता है?
1: रंगशाला में और क्या होगा, नाटक होता है महारानी, राजा खुद भी हिस्सा लेते हैं।
0: सचमुच नाटक में खुद भी हिस्सा लेते हैं? बड़ा काम है, क्या करते हैं नाटक में?
1: कभी दुष्यंत बनते हैं तो कभी भरतहरी, कभी
0: बस बस मैं जान गई, राजा साहब जो है नहीं वो नाटक में होते हैं। हमारे उधर अवध में भी एक नवाब हैं जो अंदर सभा रचाते हैं। पता नहीं इस देश के राजाओं और नवाबों को कौन से शौक हैं, वो आज को भूल गए हैं। उठती हुई आंधियों को अनदेखा करके वो कल्पना की रेत में आंखें छिपाए बैठे हैं। तो ऐसी है झांसी की रंगशाला।
1: सरकार, रंगशाला में मोतीबाई और जूही भी हैं।
0: कौन है वो?
1: रंगशाला के अभिनेत्रियां हैं, क्या नाचती हैं सरकार।

कभी देखेंगी तो कहेंगी क्या बात है। राजा की रंगशाला की शान है ये दोनों, मोती और जूही, और ध्रुपद धमार होरी के गायक उस्ताद मुगल खान स्वयं।

0: हमें इन बातों की समझ नहीं है मुंदर। कलावंतों गुणवंतों का साथ कभी मिला नहीं। हमारी शिक्षा दीक्षा तो बाला गुरु के अखाड़े में हुई है। हमारे संगी साथी रहे हैं नाना साहब, राव साहब और रामचंद्र राव, जो तात्या टोपी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पेशवा बाजीराव के बिठूर में यह सब नहीं होता था। पेशवाई धोखे से फिरंगियों ने छीन ली। इसका संताप था, शोक था। और हम कल्पना करते थे, तदबीरें सोचते थे मातृभूमि की तकदीर बदलने की। इस रंगारंग जीवन के लिए फुर्सत ही कहां थी। झांसी आकर, ये झांसी की रानी बनकर हम अपने स्वातंत्र्य स्वप्न को तो स्थगित नहीं कर सकते। सुनो सुंदर, मुंदर, काशी।
1: हुकुम सरकार।
0: हमारी सहेली बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो हम कहें।
1: आज्ञा करें सरकार।
0: तुम्हें व्यायाम करना होगा, प्रतिदिन अखाड़े में मलखंब और कुश्ती का अभ्यास करना होगा, घोड़े पर सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाना भी आना चाहिए।
2: ये तो बड़ी कठिन काम है सरकार, और फिर औरतें ये सब कहाँ करती हैं?
0: जब झांसी के पुरुष ये सब भूल गए हैं तो स्त्रियां करेंगी।
1: करेंगी सरकार, करेंगी। आपकी आज्ञा सिर माथे सरकार। मगर रानी साहिबा ये सब हमें आता ही नहीं, सिखाएगा कौन?
0: हम सिखाएंगे। और फिर बिठूर से बाला गुरु जी को बुला लेंगे।
1: बाला जी तो पुरुष हैं, हमारी लाज शर्म मर्यादा का क्या होगा सरकार?
0: तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए ही तो ये विधान है सखी। स्वयं इतनी शक्ति प्राप्त करो कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत न कर सके।

0: महाराज अधिराज राव गंगाधर राव के स्त्री चरणों में प्रणाम। फिरंगी हाकिम कप्तान गॉर्डन दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं सरकार।
1: लगता है फिर कोई फरमान लेकर आए हैं, आने दो।
0: जो आज्ञा सरकार।
1: आइए गार्डन साहब, आइए, पधारिए पधारिए। सब कुशल तो हैं? आसन ग्रहण करें। कहिए कैसे आना हुआ?
2: सब आपकी कृपा है, शुक्रिया शुक्रिया। किसी खास कारण से तो नहीं राव साहब, मैं तो आया था ये बतलाने के लिए कि कल आपका नाटक बहुत अच्छा रहा।
1: जी आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे कलाकारों का कमाल था ये सब।
2: लेकिन क्या कहते हैं वो उसे, हाँ डायरेक्शन वो तो आपने किया था ना, सुर ताल अभिनय को साधने का बड़ा काम। वाह वाह।
1: धन्यवाद। ये तो हमारा ही काम है, सूत्र संचालन, राजा और नायकों का, और खेल में खिलाड़ियों का। कौन अभिनेता कब और कहां क्या करेगा ये तो सूत्रधार ही निश्चित करता है।
2: ओ दुरुस्त फरमाया आपने राजा साहब, दुरुस्त फरमाया। लेकिन नाटक की इबारत तो लिखी हुई होती है ना, उससे बाहर तो आप ही नहीं जा सकते। और मैंने तो सुना है कि आपके धर्म में सब कुछ पहले ही तय और लिखा हुआ है, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होने को सकता।
1: आप कर्मफल की बात कर रहे हैं गॉर्डन साहब? हाँ, हम मानते हैं कि कर्मों का फल पहले से तय है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये तो हमारी जीवन दृष्टि है, इसीलिए हम अच्छे अच्छे काम करते हैं।
2: वेल, बेशक नाटक खेलना भी एक अच्छा काम है।
1: गॉर्डन साहब, हम सिर्फ नाटक नहीं खेलते, राज प्रबंध के दूसरे दायित्व भी हम पर हैं। हमारी रैयत हम पर विश्वास करती है, हम उसके प्रतिपालक और संरक्षक हैं।
2: कंपनी बहादुर की सरकार इसे मंजूर करती है राजा साहब, आप हमारे दोस्त और साथी हैं। आपको हमने झांसी का राजा तस्लीम किया है, और राजकाज में हाथ बटाने के लिए फिरंगियों की फौज आपकी सेवा में तैनात है।
1: लेकिन उस फौज का खर्च तो झांसी को उठाना पड़ता है, हमने अपना एक बड़ा इलाका उसकी उगाही के लिए आपको दिया है।
2: वेल, आप अपने कारिंदों को भी तो तनख्वाह वगैरह देते हैं ना, देते हैं ना, इसमें अजीब क्या है? फिर फिरंगियों की फौज आपके कितने काम आती है?
1: लेकिन वो तो आपके लिए लड़ेगी गॉर्डन साहब, हमें तो हर हाल में अपने ही सिपाहियों का भरोसा है जो हमारा नमक खाते हैं।
2: नमक, नमक यू मीन सॉल्ट? नो नो नो नो नो राजा साहब, वफादारी का ये सूल अब नहीं चलता, समाना बदल रहा है। अब लड़ने वालों को रुपया चाहिए, रुपया, दौलत। राजा साहब, दौलत ही एक अकेला मकसद है।
1: लेकिन लेकिन ये एक व्यापारी का दृष्टिकोण है, वीरता का नहीं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता गॉर्डन साहब।
2: वेल, अब तो हो रहा है राजा साहब, कितने निश्चिंत हैं अब आप। सारी चिंताएं हमारे सिर, और आपके पास बस फुर्सत ही फुर्सत, आराम ही आराम। नाटक खेले या फिर शिकार करें, पूरी तरह स्वतंत्र।
1: नहीं गॉर्डन साहब, नहीं, स्वतंत्रता की यह समझ हमारी नहीं है। वास्तव में आप में और हम में सिर्फ चमड़ी के रंग का ही फर्क नहीं है, और भी कई अंतर हैं। हमें लग रहा है कि यह साथ ज्यादा नहीं निभेगा, आमना सामना तो होना ही है।
2: वेल, मैं उम्मीद करता हूं राजा साहब हमारी दोस्ती बनी रहेगी, आखिर हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपके लिए हम अपनी जान दे देंगे।
1: और बदले में जान ले भी लेंगे, यही तो सौदेबाजी का चलन होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे।
2: ओ इन बातों को छोड़िए राजा साहब, और कुछ बताइए, रानी साहिबा कैसी हैं?
1: कैसी हैं? अच्छी हैं, ये आपकी दिलचस्पी का विषय तो नहीं है।
2: ओ दोस्त हैं ना हम आपके, इसीलिए घर परिवार की खबर तो रखना ही चाहिए ना। सुना है कि रानी साहिबा ऐसे काम करती है जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए।
1: जैसे?
2: तीरंदाजी, तलवारबाजी। सुना है वो झांसी की पुरानी थोपे ठीक करवा रही है और गोला बारूद ठलवा रही है।
1: काफी जानकारी रखते हैं आप।
2: झांसी का बच्चा बच्चा जानता है कि रानी साहिबा औरतों की एक पलटन तैयार कर रही है।
1: ये आपका विषय नहीं है गॉर्डन साहब।
2: बेहद भी मुआफ कर रहे हैं राव साहब, कंपनी सरकार जानना चाहती है कि इस तैयारी का मकसद क्या है, किसके खिलाफ लड़ेगी औरतों की पलटन।
1: आप जमा खातिर रहें, आप तो हमारे दोस्त हैं, है ना? आपसे लड़ने का तो सवाल ही नहीं है।
2: ओ बेशक बेशक, मगर हमने आपसे वायदा कर रखा है कि अगर आपको लड़ना पड़ा तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है ना राजा साहब? राजा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि झांसी की रियासत में रानी साहिबा का शुभागमन किसी कारण से हुआ है।
1: कैसा कारण?
2: यही कि रियासत के उत्तराधिकारी को जन्म दें, वह भी बेटा जो आपके बाद झांसी की गद्दी संभाल सके। कंपनी सरकार को इसकी बहुत चिंता है, बहुत चिंता।
1: लेकिन हमारे घरेलू मामलात की चिंता कंपनी को नहीं करनी चाहिए।
2: वेल, ठीक फरमाते हैं राजा साहब, ठीक फरमाते हैं। हम उनकी चिंता भी नहीं करते, लेकिन ये घरेलू मामला नहीं है राजा साहब, इससे रियासत की रियाया का और हमारा भी संबंध जुड़ा हुआ है। आखिर हम ही तो यह तय करेंगे कि झांसी की गद्दी पर कौन बैठे।
1: ये तय करने वाले आप कौन होते हैं?

0: बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का देहावसान।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की तीसरी कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगारों के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स

समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। नौका तिरंगा यात्रा में 100 से अधिक नावों पर सवार होकर युवा खिलाड़ी प्रतिनिधि और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पूरे प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं, वक्त है हमारे महिला कार्यक्रम का। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

बहनों नमस्कार। समय है कार्यक्रम महिला सभा का और साथ है आप सभी श्रोता बहनों का। आपके इस साथ को और अधिक रोचक, मनोरंजक और जानकारी परक बनाने के लिए आज आपके साथ हूं मैं, आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। मौसम है बारिश का और वर्षा ऋतु अभी पूरी तरह से हम पर मेहरबान नहीं हो पा रही है। बहनों वर्षा की रिमझिम फुहारें सावन के महीने में तो शायद ही किसी को अच्छी ना लगती हों। प्रकृति ने और ईश्वर ने हमें हवा पानी तो दिल खोल कर दिया है बहनों, और ये अब हम पर निर्भर है कि हम इन्हें कितना सहेज कर अपनी अगली पीढ़ी को दे पाते हैं, हम खुद ले पाते हैं। क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति प्रदत्त उपहारों को सहेज कर रखना जरूरी कर दिया है। अब देखिए ना, लाखों करोड़ों पानी की बूंदें धरती पर आती हैं, पर हम उनमें से कितना पानी सहेज पाते हैं? वर्षा का ज़्यादातर पानी नदियों में बहकर चला जाता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, और वहीं दूसरी ओर जब गर्मी आती है तो पानी की कमी का पता भी चलता रहता है। तो ऐसे में एक छोटी सी सोच बड़ा बदलाव ला सकती है, और इसी सोच के साथ भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का संदेश बहुत सरल है बहनों, जहां वर्षा हो वहीं और जब वर्षा हो तभी उसका संग्रह करें, यानी बारिश की हर बूंद को बचाने का प्रयास करें। असल में बहनों आबादी बढ़ रही है, भूजल का स्तर कम हो रहा है और बदलता मौसम हमारे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो अगर अभी से हम गंभीरतापूर्वक जल संरक्षण का प्रयास नहीं करेंगे तो स्थिति आने वाले समय में बहुत विकट हो जाएगी। तो अब हम ये सोचें कि हम जल संग्रह कैसे कर सकते हैं, पानी हम कैसे बचा सकते हैं। तो बहनों इसके लिए बहुत छोटे छोटे प्रयासों की ज़रूरत है, छोटी छोटी कोशिशों की ज़रूरत है। अपने घर की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर लगवाएं, पुराने तालाबों और कुओं की सफाई करना, जलाशयों का संरक्षण करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ये सारे ही कदम वर्षा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बहनों जब तक जन भागीदारी यानी कि हम सबकी भागीदारी नहीं होगी तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। जब हर नागरिक, हर परिवार, हर विद्यालय और हर ग्राम पंचायत इस दिशा में आगे आएंगे तभी हमें इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। बहनों पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जल संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो बहनों इस बारिश हम जरूर बचाएंगे बारिश की बूंदों को, है ना? तो चलिए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: अब हम आपको लिए चलते हैं कथा कुंज की ओर। कथा कुंज के अंतर्गत हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चेतना का प्रकाश। कहानीकार हैं नीलम शरद।
1: दरवाजे पर घंटी बजी तो निशा ने हाथ की साड़ी जो उसने अलमारी से पहनने के लिए निकाली थी पलंग पर फेंक कर दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर महरी को देखकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि बिना बताए वो दो दिन से नदारद थी। निशा ने सोचा था कि आते ही उसको आड़े हाथों लेगी, आखिर उसे 500 रुपया महीना देते हैं, कोई फ्री में काम थोड़ी कराते हैं। लेकिन महरी के सामने उसकी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो स्वर को कोमल बनाते हुए बोली, बसंती कम से कम कहकर तो छुट्टी लिया करो। क्या बताएं बीबी जी, कहते हुए उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया तो निशा को बीच में ही टोकना पड़ा। अच्छा अच्छा, अब जरा जल्दी जल्दी काम निपटा दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। टिंकू अभी तक सो रहा है, कल से ही उसे कुछ बुखार हो रहा था। जुकाम खांसी तो काफी दिनों से चल रहा था, पर समयाभाव के कारण वो उसे दवा ना दिला सकी थी। उसके अपने भी सिर में सुबह से दर्द था। उसने पिंकी को आवाज दी, बेटी पिंकी मेरे लिए एक कप कड़क चाय तो बना दे। तुम खुद बना लो मम्मी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल से मेरे एग्जाम हैं, पिंकी ने दो टूक जवाब दे दिया था। निशा की आंखों में दुख के आंसू छलछला आए थे, सुबह से ही वो बहुत तनावग्रस्त थी। इधर टिंकू आवारा लड़कों की संगत में रहने लगा था। वैसे वह उसको तो डरकर नहीं बताता था, पर वो अपनी सारी बातें अपनी बड़ी बहन पिंकी को बता देता था। इसी से उसे सारी बातें मालूम हुई थी। वो घर में चोरी करने से लेकर धूम्रपान और ड्रिंक भी करने लगा था। एक बार टिंकू के बारे में पिंकी ने जो बातें उसे बताई उन्हें सुनकर तो निशा सिहर उठी थी। उसे चिंता हो गई थी कि कहीं बेटे को कोई गंदी बीमारी ना जकड़ ले, अगर ऐसा हो गया तो टिंकू की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। निशा ने टिंकू को खूब डांटा, समझाया और प्यार से नसीहत भी दी, पर गंदे दोस्तों की सोहबत कोई आसानी से थोड़ी छूटती है। पर वो क्या करती, घर के साथ ही ऑफिस की जिम्मेदारी भी तो उसके सिर पर थी। उसके पास समय अतिरिक्त होता ही कहाँ था जो कि वो बच्चों पर ध्यान दे पाती। एक बार से उसकी जिंदगी यंत्रवत हो गई थी, और जब पति नवीन ऑफिस के काम से बाहर चले जाते थे तब तो और अधिक जिम्मेदारियां उसे निभानी पड़ जाती थीं। निशा ने टिंकू के बारे में सब कुछ पति को बता दिया, अपनी चिंता भी जाहिर कर दी, पर अगले दिन ही नवीन को 2 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ गया। इस पीरियड में वो विशेष परेशान हो गई। खींच और क्षोभ से भरी निशा बच्चों पर बरस पड़ती, जरा जरा सी बात पर उनकी धुनाई भी कर देती। मार खा खा कर बच्चे और अधिक जिद्दी और उदंड हो गए थे। एक दिन पिंकी ने बताया कि एक नुकीला तार गड़ जाने से टिंकू के हाथ में घाव हो गया है। चूंकि तार लोहे का नुकीला था इसीलिए निशा को चिंता हुई। उसने टिंकू को 50 का नोट देकर कहा कि क्लिनिक जाकर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना। वैसे तो निशा खुद ही उसे इंजेक्शन लगवाने जाना चाह रही थी, पर ऑफिस जाने की हड़बड़ी के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। उधर दूसरी ओर टिंकू इंजेक्शन लगने के डर के कारण क्लिनिक नहीं गया। दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खाकर उसने रुपए खर्च कर दिए और घर आकर कह दिया कि मैं इंजेक्शन लगवा आया हूँ। उधर ऑफिस में निशा को अपराध बोध होता था कि वो बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, सही माँ होने का फर्ज नहीं निभा पा रही है। उसे खुद लगता था कि मानो वो एक मशीन बनकर रह गई है। निशा को ध्यान आया कि पड़ोस वाली मिसेस श्रीवास्तव उसके मुकाबले कितनी कम पढ़ी लिखी है, गांव की भी है तो भी उनके बच्चे कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं, जो हमेशा खिले खिले से दिखते हैं। उनका कितना सुखी परिवार है, जबकि उनकी फैमिली इनकम हमसे कितनी कम है। निशा के हाथ फाइलों पर यंत्रवत चलते जा रहे थे, पर मन घर की तरफ चुंबक की तरह से खींचा चला जा रहा था। दफ्तर से घर पहुंची तो पाया कि उसके ननंद नंदोई अपने 3 बच्चों के साथ आए हुए हैं। उसने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली और मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। पर ननंद के 3 बच्चे अत्यंत फूहड़ थे, दिन भर मार पिटाई गाली गलौज तोड़ फोड़ करते रहते थे, और उसे तो पूरे समय रसोई में घुसे रहना पड़ता था। मेहमानों को तमाम व्यंजन बना बनाकर खिलाने में ही पूरा वक्त बीत जाया करता था। वो परेशान हो गई थी। हफ्ते भर बाद ऐश करके वे विदा हुए। विदाई में भी उसे सारे शिष्टाचार निभाने पड़े, तोहफे देने पड़े और विदाई में परंपराओं का पालन करना पड़ा। नवीन टूर से वापस लौटे तब तक निशा बिस्तर पर पड़ चुकी थी। इतने दिन की थकान भाग दौड़ उसे धराशायी करने के लिए पर्याप्त थी। वैसे भी पहले से ही उसकी तबीयत ढीली चल रही थी, पर अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उसका बदन इतना कमजोर हो गया था कि वो थोड़ा सा चलने में ही लड़खड़ा जाती थी। नवीन को लगा कि पत्नी नाटक करके ये जताना चाहती है कि उसकी अनुपस्थिति में वो कितनी अधिक परेशान हो गई है, इसलिए वो उसकी उपेक्षा कर गया। इस पर निशा की हालत वास्तव में बहुत दयनीय हो गई थी। उधर एक दिन टिंकू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बदन ऐंठने लगा और गले में बेहद तकलीफ होने लगी। डॉक्टर बुलाया गया, जिससे टिंकू को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई। अस्पताल पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही टिंकू गंभीर स्थिति में चला गया। उसे टिटनेस हो गया था, क्योंकि लोहे के जंग लगे तार से घाव होने पर भी उसे टिटनेस का इंजेक्शन जो नहीं लग पाया था। वैसे टिंकू ने बड़ी बहन पिंकी को यह एक सप्ताह बाद बताया था, और वो भी कसम खिलाकर इस शर्त पर कि वो मम्मी को नहीं बताएगी। पिंकी उसे लेकर डॉक्टर के पास उसी समय गई भी थी, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि इंजेक्शन चोट लगने के 24 घंटे के भीतर लगना चाहिए, अब कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो वापस आ गई थी, और दोनों ने माँ से इसीलिए भी कोई चर्चा नहीं की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसी चोटें तो लोगों को प्रायः लगती ही रहती हैं। पर अब स्थिति जटिल हो गई थी। निशा, नवीन, पिंकी सभी घबराए हुए थे, पर सबसे ज्यादा दुख निशा को हो रहा था। वो आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अब किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी थे। अब वे एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। अब वे परस्पर काफी करीब आ गए थे। नवीन ने निशा की हालत डॉक्टर को बताई तो परीक्षण के बाद उसे भी एनीमिक पाया गया। उसका इलाज शुरू हो गया। लेकिन निशा के मन में विचारों का एक द्वंद्व पल रहा था। वो वैचारिक झंझावात में फंसी हुई थी। उसे लग रहा था कि निश्चित रूप से उससे अक्षम्य अपराध हुआ था। वो केवल अपनी नौकरी तक ही सिमट कर क्यों रह गई, और क्यों नहीं उसने अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने, उन्हें अनुशासित करने पर ध्यान दिया। उधर दूसरी तरफ नवीन भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, क्योंकि वो भी ये समझ चुका था कि बच्चों की परवरिश में उससे भी लापरवाही हुई है। आज दोनों अपनी अपनी गलती का एहसास कर रहे थे और मन ही मन ये संकल्प ले चुके थे कि बच्चों की अच्छी परवरिश करने पर ध्यान देंगे और नौकरी और पारिवारिक दायित्वों में संतुलन बना के रखेंगे। अब नवीन और निशा दोनों को अपने अंतर्मन में प्रकाश बिखरता हुआ जान पड़ रहा था, और ये प्रकाश था चेतना का।
0: बहनों, अभी आपने नीलम शरद की कहानी सुनी। शीर्षक था चेतना का प्रकाश। बहनों, हम कई जगह पढ़ते सुनते रहते हैं कि आज की बचत कल की सुरक्षा, लेकिन बहनों अगर हम इस पर गौर करें तो यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यही चीज हमने अभी जल संरक्षण में भी देखी कि अगर हम आज पानी की बूंदों को बचाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो यही बात बहनों हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बचतें भविष्य में हमारी बड़ी सुरक्षा का आधार बनती हैं। बहनों, अब की जीवन शैली तो हम आप देख ही रहे हैं, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और खर्चे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ वर्षों पहले तक जिन वस्तुओं को विलासिता की श्रेणी में हम रखते थे, अब वही हमारी ज़रूरतों में शामिल हो गई हैं। लेकिन बहनों, हमें खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी आज की बचत और कल की सुरक्षा के महत्व को अच्छे से समझाना है। भगवान न करे परिवार में कभी कोई सदस्य बीमार हो जाए तो अस्पताल दवा सभी कुछ के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, और यह सब हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जबकि हमने बचत की होगी। हम अपनी आय का एक छोटा हिस्सा भी अगर नियमित रूप से बचाते हैं तो वह भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में हमारा सहारा बन सकता है। नियमित बचत की आदत हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, और बाजार तो बहनों इस समय अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, लेकिन हमें अनावश्यक खर्चों पर ज़रूर विचार करना है, और यही बात हमें अपने बच्चों को भी बताना है, इस नई पीढ़ी को भी बताना है कि जहाँ पर बच्चों के मुंह से कुछ निकला नहीं और उनका वह सामान हाजिर हो जाता है, तो इस वाली ललक पर हमें थोड़ी सी रोक लगानी है, तभी हम एक आरामदायक भविष्य बना पाएंगे और अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो चलिए फिर से सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

और आज बहनों बस इतना ही समय हो चला है। इस मौसम में आप अपना भी ख्याल रखें, अपने अपनों को सुरक्षित रखें। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए देवी गीत और चाटकोवा और कतवाती।

और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए

निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुनीति महेश्वरी के गाए भजन और गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: सुनीति महेश्वरी के गायज भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत तीसरी कसम तेरी कसम फिल्म से अमित कुमार की आवाज़, आरन बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

सलमा आका की आवाज़ में सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत। हसन कमाल की लिखी गीत की धुन बनाई है रवि ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा, पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर बहस का मौका दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर चर्चा हो रही है। वहीं कल यानी दूसरे दिन समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर बहस और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा,
2: मध्यप्रदेश के अंदर आज 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। देश के युवाओं को लोकतंत्र, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है। जिस प्रकार से आपने शुरुआत की ये उसकी अच्छी झलक है।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुईं। यात्रा में हजारों नागरिकों, युवाओं, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में नावों की विशेष फॉर्मेशन से तालाब के बीच विशाल फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत दमोह के तहसील ग्राउंड से निकली तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मैहर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और आगरमालवा में आयोजित तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लेकर लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के 9 विशिष्ट सेवा पदक और 33 सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 3 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी दिए जाएंगे, जिसमें स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को पदक मिलेगा। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा समेत कई शहरों के 500 से ज़्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, जमीन और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए भोपाल में देर रात से आज तड़के तक जांच अभियान चलाया, जिसके तहत डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से करीब 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई गई है। टीम ने पनीर के नमूने जाँच के लिए लैब में भेज दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दूरसंचार और प्रसारण में शुल्क निर्धारण तथा बिलिंग व्यवस्था विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। धार जिले में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम उटावत पीपलखेड़ा के पास बच्चों से भरी स्कूल बस और यात्री बस की भिड़ंत में 16 लोग घायल हो गए। और सतना जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 माह का सघन जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के

0: मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
6: ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास

0: विश्वास नहीं है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेटा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
6: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है बेटा फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाजें दी है अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवा ने, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए बेटा फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां धामणी मानोरा ज़िला वाशिम से तुलसी राम डेरे मायावती डेरे संदेश डेरे।

आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्तजी डेरे, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सब ने सुनना चाहा है बेताब फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। आनंद बख्शी का गीत है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

चंबल की कसम, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, साहिर का गीत और खयाम का संगीत। इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा ने, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर का गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव।

जब जब फूल खिले, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर। आगर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी।

एक मणकर सर्वोच्चो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा खान हादिया खान अस्मा सालिया शेब खान साइमा मुस्तफ़ा खान आफिया खान राव भाई शहीद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा जब जब फूल खिले फिल्म से।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है।

0: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुईं। इस मौके पर एक फ्लोटिंग तिरंगा भी नावों के माध्यम से बनाया गया। देश के अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है और सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:30 और रात 9:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00 और 6:45 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विश्व अंगदान दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम। 7:30 सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरदयाल शर्मा की कृषि वार्ता। विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। संसद समीक्षा रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी और रात 8:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे अली अहमद हुसैन और पार्टी का शहनाई वादन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए गीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे सुनीति महेश्वरी के गाए गीत और भजन।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत टूटे खिलौने फिल्म से, आवाज यशदास की है, गीत कैफे आजमी का और संगीत बप्पी लहरी का।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म खिलाड़ी से। अनवार सागर के लिखे गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत अनु मलिक का।

अगर तुम ना होती। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बाबरा का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सौतन फिल्म से आवाज़ आशा भोंसले की, सावन कुमार का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का गंभीर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय और सर्किट पीठों की स्थापना पर विचार करने को कहा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए नई आशा और उन्हें नया जीवन देने का महान संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व अंगदान दिवस पर अपने संदेश में अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करने और अंगदान के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। और प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। हम डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 4:00 हैं। लीजिए सुनिए नाटक अंधा मोड़। लेखक अजीमुद्दीन और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।
2: अजीमुद्दीन का लिखा नाटक अंधा मोड़, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।

0: क्या हुआ साकी? क्या सोचने लगे? तालाब के किनारे तो दौड़ते हुए आए थे, अब कूदने से डर लगता है? पानी बहुत गहरा है ना?
1: हंसो मत, मैं मरने से नहीं डरता, और हाँ, मरने वाले को पानी की गहराई से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: झूठ, एकदम झूठ, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। शायद तुम्हें तुम्हारा अतीत आवाज दे रहा है।
2: मेरी आंखों के आगे वो सारे पल जमा हो गए जब मैंने जिंदगी को जिया था।
0: मुझे मालूम था तुम्हारी जीने की चाह भी मरी नहीं है।
1: नहीं, बकवास करते हो तुम, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी आवाज। वैसे भी आत्मा की आवाज कौन सुनता है? मैं अब और नहीं जी सकता, जीने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास। मैं बस कूद रहा हूं, जान डूबने से पहले मैं इस जिस्म को खत्म कर दूंगा।
3: बचाओ, बचाओ, बचाओ।
1: वहां कौन है? कौन है वहां? बोलता क्यों नहीं? ए, तुम कौन हो तुम?
3: वो मेरा पीछा कर रहे हैं।
1: कौन कर रहा है तुम्हारा पीछा?
3: हवस के भेड़िए।
1: लेकिन वो तुमसे चाहते क्या है?
3: आदमी भला किसी औरत से क्या चाहता है? देखो देखो देखो, वो आ गए। मुझे बचा लो इन भेड़ियों से, मुझे बचा लो।
4: उधर देख, उधर
5: इधर ही आई थी, तू आ दे।
4: अरे कहाँ छुप गई रानी?
5: तुझे जन्नत की सैर करवाएंगे, जन्नत की सैर।
4: क्या पटाखा चीज थी यार। चल छोड़, भागते भागते सब उतर गई।
5: हाँ यार, अपने को अभी और लगेगी,
1: अपने को भी।
4: चलो फिर छोड़ो, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी।
1: हाँ यार,
4: चलते हैं जाने मन। तू नहीं तो और सही।
5: और नहीं तो और सही।

0: चले गए।
1: हमदर्दी के लिए धन्यवाद, अब मैं चलूंगी।
0: कहाँ जाओगी?
1: तालाब की तह में अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ।
0: तालाब का पानी बहुत गहरा है।
1: डूबने के लिए गहरे पानी की ही जरूरत होती है।
0: मगर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
1: औरत होना, सिर्फ औरत होना।
0: औरत होना प्रॉब्लम?
1: मैं सच कहती हूँ, संसार में औरत होना प्रॉब्लम बन गई है।
0: बहुत सी औरतें देवियां भी तो हुई हैं, जैसे।
1: मत नाम लो पाकीज़ा देवियों का।
0: ठीक है, तुम बताओ औरत होना प्रॉब्लम क्यों है?
1: कभी दहेज के लिए जलाई जाती हैं, कभी शान शौकत की वेदी पर चढ़ाई जाती हैं, और अब तो औरत को पैदाइश में ही लाचार बना दिया गया है।
0: मैं समझा नहीं।
1: अब तो उसको दूरबीन से देखकर पेट में ही खत्म कर देते हैं।
0: भ्रूण हत्या। मगर अब तुम विषय से हट रही हो।
1: मैं सिर्फ सच कह रही हूँ।
0: तुम कहना चाहती हो कि औरत वो अपाहिज है
1: जो मर्दों के सहारे के बिना न खड़ी हो सकती है न चल फिर सकती है।
0: ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि आदमी औरत गाड़ी के दो पहिए हैं।
1: सिर्फ किताबों में।
0: तुम उससे कब और कहाँ मिली थी?
1: वो किलोल पार्क में चिड़ियों को दाना खिलाने आता था, और मैं अपने गम गलत करने वहां जाती थी।
0: गम गलत करने? क्या मतलब?
1: मेरी माँ की बचपन में मौत हो गई थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली।
0: वही घिसा पिटा किस्सा, सौतेली माँ ने तुम पर जुल्म किया वगैरह वगैरह।
1: ये घिसा पिटा किस्सा नहीं।
0: खैर आगे बोलो।
1: एक दिन मैं अपने सौतेले भाई को आंगन में खिला रही थी, अचानक वो हाथ से छूट गया। उसके सर से जरा सा खून छलक आया। ये देखकर मेरी सौतेली माँ आपे से बाहर हो गई।
2: कमबख्त, नौस पीटी, क्या किया तूने? ये मुन्ना क्यों रो रहा है?
1: कुछ नहीं माँ, भैया वो हाथ से छूट गया।
2: अच्छा?
1: और गिर पड़ा।
2: गिर पड़ा या गिरा दिया?
1: नहीं माँ, मैंने नहीं गिराया।
2: नहीं, तूने उसे जानबूझकर गिराया है कमीनी। तुझको वो एक आंख नहीं भाता है। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ले ले ले।
1: माँ मुझे मत मारो।
2: कमीनी
1: मुझे मत मारो। माँ
2: ठहर जाओ, तुझे अंगारों से सेकती हूँ। तुम बहुत बहुत सताती है। तुम मरती भी तो नहीं है। ले ले ले।

0: कितनी जालिम है ये दुनिया। तुम्हारी सौतेली माँ ने ये भी नहीं सोचा कि कल को वो मर गई तो उसके बच्चे का कोई दूसरी माँ इससे भी बुरा हशर करेगी।
1: अगर इंसान ये सोचते तो फरिश्ते ना बन जाएं।
0: हाँ, तुम ठीक कहती हो सिमरन।
1: अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम सहते हुए मैं कब जवान हो गई पता ही नहीं चला।
0: और तुम्हारे पिता, वो कुछ नहीं कहते थे?
1: पिता वो क्या कहते, उन्हें तो जवान औरत का नशा था। वो तो उसके इशारों पे नाचते थे। माँ कुछ लगाई बुझाई करती और वो गालियां बकते और पीटने लगते।
0: वाकई तुमने बहुत ठोकरे खाई है, जुल्म झेले हैं सिमरन। हाँ तो सिमरन, तुम कह रही थी कि तुम्हारी आदिल से मुलाकात पार्क में हुई थी।
1: हाँ, हम लोग रोज मिलते थे, प्यार परवान चढ़ रहा था।
0: सिमरन, सिमरन, आखिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? अरे मैं हूं ना तुम्हारे गम बांटने के लिए।
1: आदिल, प्यार के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, आदमी बहुत जल्दी थक जाता है।
0: हाँ सिमरन, मैं जानता हूँ कि प्यार के रास्ते में हमेशा फूल नहीं खिलते, कांटे, दरिया और कभी कभी तो समंदर तक प्यार की राह का रोड़ा बन जाता है।
1: फिर भी?
0: हाँ, मैं तुम्हारी खातिर समंदर की गहराइयों को नाप दूंगा सिमरन।
1: आदिल, तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो तुम पर भरोसा करने का जी चाहता है।
0: सिमरन,
1: देखो आदिल, मैं बहुत गरीब और कमजोर लड़की हूँ।

0: कहीं ऐसा ना हो कि...
1: नहीं सिमरन नहीं, कहीं कोई पत्ता भी खड़केगा ना तो तुम मुझे ढाल की तरह अपने पास पाओगी।
0: आदिल
1: सिमरन, हाँ अब बिल्कुल ठीक है।
0: क्या ठीक है?
1: ये तुम्हारा मीठा लहजा, ये मुस्कुराते होंठ, ये चमचमाती आंखें।
0: आदिल, मेरे आदिल।
1: एक बात कहूँ सिमरन?
0: हाँ कहो ना।
1: तुमको ऊपर वाले ने बहुत हसीन बनाया है। ए, ये तुम्हारी सादगी, ये बागपन, वाकई तुम कुदरती हुस्न की मालिक हो सिमरन।
0: नहीं हटो, मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब चूड़ियों की तरह टूट ना जाए।
1: अरे मैं तुम्हें ऐसी चूड़ियां लाकर दूंगा जो कभी टूटने ना पाएंगी।
0: मगर आदिल, ठोकर ही क्यों लगने दें कि वो टूट जाएं?
1: नहीं सिमरन नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो?
0: इसलिए आदिल कि कभी कभी ठोकर अनजाने में ऐसे लगती है कि गिरने वाला संभल भी नहीं पाता।
1: देखो आदमी का इरादा मजबूत हो तो वो संभल सकता है।
0: आज मैं बहुत खुश हूँ आदिल। आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। मेरी आदिल
1: सिमरन, मेरी सिमरन।
2: बड़ी मोहब्बत करता था वो तुमसे।
0: हाँ लगता तो ऐसा ही था, और क्योंकि एक बैसाखी की चाह मुझ में भी थी जो मेरा सहारा बन सके।
2: मतलब एक मजबूत मर्द का सहारा।
0: हाँ, जिसकी हर औरत को तलाश होती है। हम मिलते रहे, प्यार परवान चढ़ता रहा। मेरे घर के हालात ऐसे थे कि उदासी मिटती ही नहीं थी, और आदिल मेरा उदास चेहरा देख परेशान हो जाता था।
3: ये क्या सिमरन, तुम फिर उदास हो गई?
0: बड़ी ठोकर खाई है,
4: बड़ी ठोकर
3: खाई है। तुम्हें कोई ठोकर नहीं मार सकता।
5: कोई ठोकर नहीं।
3: अरे मैं हूं ना,
5: अरे मैं हूं ना।
0: ठोकरें खाना मेरी जिंदगी बन गई है, और इन ठोकरों से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मेरा यकीन है कि ठोकरें आदमी को इंसान बनाती हैं।
5: वाकई सिमरन तुमने बड़े दर्द झेले।
0: आदिल, दर्द सहने का अपना अलग एक मजा होता है। दर्द इंसान में ताकत पैदा करता है।
5: क्या तुम उससे शादी करोगी?
0: वो मेरी शादी

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू शाहिद, थैंक यू।
0: सर मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा।

0: साल के होते हैं जब एनडीए ज्वाइन करते हैं.
1: अच्छा.
0: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते हैं, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
1: उस बड़ी के लिए.
0: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है.
1: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए एक दूसरे के लिए.
0: यही एक कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स से इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
1: जी.
0: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए.
1: क्या बात है सर, ये
0: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा. और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है. तो जब ये इस तरह की
1: ये जो जज्बा है,
0: हाँ जी जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर एक
1: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं.
0: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
1: कॉन्फिडेंस रहता है,
0: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में. हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं. वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी.
1: क्या बात है
0: वो,
1: क्या बात.
0: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना. तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में. इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है. अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट सक्सेसफुल होता
1: नहीं हो सकता. सर वही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज़्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए.
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल. वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज. 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते
1: हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना.
1: बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पूरा एकदम.
0: यू नो हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ लिखा था एक गोली एक दुश्मन. जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ
1: आप वो मोटिवेटेड मतलब स्लोगन आपको मिल रहा है.
0: आप ऐसे एनवायरमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊं और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा.
0: बिल्कुल, विदाउट अ डाउट. ये तो
1: क्या बात है,
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी.
1: सर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा. अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी होती है और टाइम ऐसा,
1: और टाइम ऐसा होता है. तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर. मैं आपको बता दूं और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एमजोली से सवाल कर सकते हैं. नंबर है 9868107070. सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँ. ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं. सर आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र. और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है. कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी, पंडित चन्नप्पा सरवाड़कर. सर ये मैसेज है.
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी.
1: और सर ये मैसेज है, हाय अमजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. What things should I remember during preparation and for SSB interview, mainly SSB guided for civilian. और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है. सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे?
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके, इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना अच्छा. चाहते हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है.
1: अच्छा,
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रही है और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर दैट इज, उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता. पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे. तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
1: इंटरव्यू की,
0: जो आप हैं.
1: क्या बात,
0: अगर
1: है?
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत बोलिए मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत बुक्स पढ़ी है, पकड़ लेगा आपको.
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं वहां पर. सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये।

0: और सर ये हैं संदेश
1: जय हिंद
0: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके ज़रिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
0: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नज़दीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियाँ दी गई इस देश की आज़ादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब NDA की। आपने NDA में जब आप आए तो क्या माहौल था वहाँ पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा, एक 16 साल के जब मानिक वहाँ पर आ रहे थे तो?
2: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है।
0: अच्छा।
2: लेकिन आप बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
0: जी,
2: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट। आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन NDA का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
0: जी,
2: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या आपने, लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
2: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने में, बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं उनको थोड़ी आदत होती है।
0: ओके।
2: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले 1-2 हफ्ते में घर की बहुत याद आती
0: जी,
2: क्योंकि चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है NDA में, और घर पे तो जो भी है आपको
0: बिल्कुल जाहिर है प्यार से, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो, तो क्या हुआ, मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है, कहते चिट्ठी लिखो।
0: अच्छा।
2: तो मैं आपको बता सोच कैसे होती है, मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए
0: जी,
2: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है, वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का, मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहाँ पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
0: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन।
2: हाँ जी।
0: और अजय देवगन जी।
2: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे।
0: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था,
2: आई थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से।
0: अच्छा।
2: तो उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 महीने तो चला था फॉर श्योर
0: जी,
2: एकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे।
0: ओके।
2: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई,
0: ठीक है,
2: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे, लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू कर, हम तो मुंबई से आया है शूटिंग वाला है, तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों।
0: अच्छा।
2: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया, और फिर एक दो सीन थे जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया।
0: अच्छा।
2: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे।
0: ओके, हीरो मतलब हीरो बन जाएंगे। ठीक है।
2: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ जाएगा, वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे।
0: अच्छा।
2: कोई ना कोई, तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी। तो
0: अच्छा।
2: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर।
0: अच्छा। सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के लिए।
2: हाँ जी प्लीज। तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
0: हाँ, गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर, सोनाली बेंद्रे।
2: बिल्कुल।
0: तो सर वहाँ पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में?
2: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं, आई थिंक। अच्छा। हमारे कुछ सीन्स वगैरह मैस के, PT ग्राउंड, क्रॉस कंट्री, ये सब होते थे, लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
0: अच्छा।
2: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
0: जी जी जी,
2: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस,
0: ऑफ कोर्स,
2: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस, जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे, कितने अच्छे से बात करती हैं, तो पूरी एकेडमी बस
0: सारी दीवानी थी,
2: दीवानी थी, कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे।
0: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर, कुछ कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
2: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहाँ पे सीन है,
0: अच्छा,
2: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है।
0: अच्छा,
2: तो एक घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रही है, वहाँ पे पहुँच गए, बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था।
0: अच्छा,
2: तो सब चलता रहता था वहाँ
0: जी। तो अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था?
2: हाँ जी, वो ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे, बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है,
0: बिल्कुल
2: फिल्मी हीरोज का नहीं होता, तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था।
0: अच्छा अच्छा,
2: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए,
0: बिल्कुल, हाँ, रीटेक्स के साथ, हाँ, वो सब ठीक से हो जाए।
2: पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था, मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
0: जो आप हैं,
2: जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मतलब वो एक्टर्स है, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारा फिटनेस है वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी, सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब, मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
2: बिल्कुल
0: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिक एमजोली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, आप बने रहें हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स का और मैसेज करते रहें।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार। आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूँ फिर आगे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस ओकेशन आई विश ऑल इंडियंस हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय, अपना भारत महान है। वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफ़ी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जहिंद सर आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूँगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूँ या सर्विंग हो,
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर। और देशवासी

0: सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सर हम आपके ऋणी हैं क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूँ, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफ़ी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके,
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: वहाँ पे, और वहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी,
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता। स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था,
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है।
0: अच्छा,
1: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं
0: जी,
1: वो पूरा शहर जंगल है और आप 100 लोग हैं।
0: अच्छा,
1: आप कितना ढूंढेंगे, और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है।
0: अच्छा,
1: और आप 9000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17000 फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, हाँ हाँ ठीक था, अच्छा था।
0: तो यानी कि वो ठीक था कह रहे हैं, वो
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे क्लिफ्स हैं
0: जी,
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा।
0: अच्छा,
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है,
0: जाहिर है, जो वेट सबसे बड़ा,
1: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप उसको पहले दिख जाए
0: जी।
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
0: एक बार,
1: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट। आपको अगर गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें कैरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा
0: है,
1: मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
0: जी।
1: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
0: हाँ,
1: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए।
0: ओके,
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे,
0: ओके,
1: उनके ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, हिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना चप्पल में जाओ फौज के, वो चला जाएगा।
0: अच्छा,
1: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं,
0: एक्सक्यूज कुछ नहीं।
1: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी, और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है।
0: अच्छा,
1: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
0: बेशक आप उनकी भी हिफाजत,
1: हाँ, आपके लिए नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस
0: कि आपको, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी,
1: कि मैं आपको यही कि जो मैं कर रहा हूँ इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ
0: जी, उनको कदर है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी, हमारा भाई है,
1: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी, फौजी एक तरफ जो प्यार फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
0: जी
1: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिल करके वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊँ। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर, इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहाँ पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी
1: बहुत, बिल्कुल। और ये दिस इज, वहाँ पे मोबाइल भी नहीं था,
0: और उस जमाने में तो
1: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
0: 10-15 दिन
1: क्योंकि पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके अच्छा। आता था चिट्ठी, दूर से दिख जाता था 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे थे कि मेरी भी चिट्ठी
0: आएगी।
1: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो मजाक नहीं है।
0: अच्छा,
1: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से, परिवार से, आपके दोस्तों से खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहाँ।
0: क्या बात है, मतलब लेटर्स की हम आज,
1: और 15 दिन से आप लिख रहे हो
0: जी,
1: आपको उसी डाक से वापस
0: वापस भी भेजना है। ओके,
1: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो आपके पास कुछ कैसेट बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली गई, वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी,
0: क्योंकि और कुछ है ही नहीं,
1: या रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का।
0: अच्छा,
1: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते हैं।
0: तो उसमें से कुछ बताइए सर।
1: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत, अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना है, फिर तुम्हारी याद आई।
0: अच्छा,
1: सनम। और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं।
0: ओके,
1: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है, और नीचे अच्छा। उसके जवान गाना गा रहे हैं, और अपने यू नो
0: परिवार को
1: याद करते हो, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते
0: हो।
1: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
0: जी,
1: वो उसको याद कर रहे हैं, जिसको मिस कर रहे हैं।
0: क्या बात है। तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है,
1: जबरदस्त।
0: मेजर मानिक एम जौली हैं आज के संदेश सोल्जर के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज़, और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ही जानना चाहूँगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफ़ी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल मैं MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा, काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहाँ से खबर आती रहे और यहाँ से खबर ना जाए, बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है, ये ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की,
0: जी,
1: स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करता हूँ।
0: जी, तो सर इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो अर्ली 2001-02 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके, ये वो जमाने की बात है।
1: हाँ, चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा।
0: जी जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने 1-2 कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफ़ी आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नई आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है,
0: ओके,
1: हमें एक स्टेप आगे रहे।
0: हुँ.
1: तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया।
0: अच्छा।
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफ़ी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया
0: था, तो ज़ाहिर है टफ भी रहा होगा।

0: टाइम पर उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, हाँ, उसको एस्टैब्लिश
1: करना, समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी,
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा
1: तो लोगों ने कहा पासवर्ड कैसे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा
1: मतलब लोग धीरे धीरे
0: समझ आया कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए इतना सब आपने किया। आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी तो ये अभी मैंने एक साल पहले लिखी थी, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज
0: है,
1: ये फर्स्ट बुक थी उसकी कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके।
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलिंस के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें इसको, अगर पिक्चराइज किया जाए इसको, फिक्शन।
1: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। जाते जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब NDA में थे तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर
0: जी, बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
0: सर लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन उन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज किया है आपको।
1: थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, NDR एंड RJ एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है, आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर से।
1: वाह, हमारे शहर से
0: जी।
1: भाटिया जी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर। विजय कुमार है।
1: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी, सर थे संदेश सोदश शाहिद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें 350 से ज्यादा नाविक तिरंगे के साथ शामिल हुई और प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं अनमोल द्विवेदी
1: और मैं हूं आद्यान नायक। और आज हम आपको उन सपनों की गलियों में लेकर चलेंगे जहां बचपन आज भी मुस्कुरा रहा है, जहां उम्मीदें अब भी आसमान को छूने की जिद करती हैं, और शायद जहां आपका कोई अधूरा सपना आज भी आपका इंतजार कर रहा है, और जहां आज भी नैन सपनों से भरे हैं।

0: तो दोस्तों, जरा नैनों को कीजिए बंद और याद कीजिए अपना बचपन, दिन जब चादर ओढ़कर हम सुपर हीरो बन जाते थे, जब स्कूल की कॉपी के आखिरी पन्ने पर रॉकेट बनाकर चांद पर पहुंच जाते थे, और जब बारिश की पहली बूंद गिरती थी तो कागज की नाव हमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जहाज लगती थी। उस उम्र में सपनों की कोई सीमा नहीं थी और शायद डर नाम का कोई शब्द भी नहीं था।
1: और सबसे प्यारी बात क्या थी जानते हो अनमोल? कोई ये नहीं पूछता था कि इतना बड़ा सपना पूरा कैसे होगा। सब कहते थे वाह बहुत बढ़िया, और हम बिना किसी झिझक के अगले ही दिन अपना सपना बदल भी लेते थे।
0: और सोमवार को डॉक्टर से शुरू करके हम रविवार आते आते सीधे अंतरिक्ष यात्री बन जाते थे। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते सपने नहीं बदलते, बस हमारी हिम्मत छोटी होने लगती है। अब हम ये नहीं सोचते मुझे क्या बनना है, हम सोचते हैं मैं बन भी पाऊंगा। और तभी हमारे दिमाग में एक पूरी मीटिंग शुरू हो जाती है। ईएमआई विभाग, जिम्मेदारी मंत्रालय और सबसे ताकतवर लोग क्या कहेंगे आयोग।
1: और ये आयोग इतने सक्रिय होते हैं कि लगता है कि आंखें अभी खुली भी नहीं थी और सवेरा हो गया।

0: लेकिन दोस्तों, सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी दुकान में नहीं बिकते, ना किसी बैंक में जमा होते हैं, ना किसी मोबाइल ऐप से डाउनलोड हो सकते हैं। इनकी कीमत सिर्फ दो चीजें हैं, मेहनत और खुद पर भरोसा। तो चलिए साथियों, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अभी इसी पल अगर आपको कोई डर ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई असफलता का भय ना हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? सोचिए बस 5 सेकंड के लिए, और जो भी आपके मन में आया वो सपना गलत नहीं है।
1: सपना जहां दस्तक न दे,

0: अनमोल, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे शहर का लड़का, ना कोई बड़ी पहचान, ना बड़े संसाधन, लेकिन एक जिद थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। और लोग हंसते रहे, कहते रहे, अरे ये सब तो फिल्मों में होता है। लेकिन उसने सुनना ही बंद कर दिया और मेहनत शुरू कर दी। आज वही इंसान हजारों लोगों की प्रेरणा है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो गिरा, फिर उठा और हर बार पहले से थोड़ा मजबूत होकर उठा।
1: लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई, लेकिन सच तो ये है, सपनों के लिए कभी देर नहीं होती। देर सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है।
0: किसी का सपना आईएएस बनना होता है, किसी का अपना खुद का स्टार्टअप, कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी, और किसी का सपना सिर्फ इतना सा होता है कि एक दिन माँ पापा मुस्कुरा कर कहें, बेटा हमें तुम पर गर्व है।
1: बिल्कुल, और साथ ही यकीन मानिए, दिल जब सपने देखता है ना, तो जमीन की नहीं आसमान की फिक्र होती है उसे। तभी मन कह उठता है कि उड़ते हुए बादल का टुकड़ा मैं कैसे तोड़ूं।

0: दोस्तों, तभी सपना अपने बस में होता है जब हम दूसरों की राय, असफलता का डर और मैं नहीं कर सकता जैसे विचार छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी मिलेगा, बस पहला कदम उठाने की देर है। पहला कदम उठाइए और बाकी रास्ता अपने आप चलते चलते मिल जाता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, वो पहले गिरता है, फिर उठता है और फिर गिरता है और एक दिन दौड़ने लगता है। अगर वो पहली बार ही गिरकर बैठ जाता तो शायद आज भी चलना नहीं सीख पाता।
0: दोस्तों, अगर आज के कार्यक्रम के बाद आपने सिर्फ एक काम किया, अपने किसी पुराने सपने की धूल झाड़ दी, उसकी तरफ एक पहला कदम बढ़ा दिया, तो समझिए हमारी आज की मुलाकात सफल हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते

जो आप सोते समय देखते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और हर नई सुबह धीरे से कान में कहती है,

0: तो दोस्तों सपने देखिए, क्योंकि सपने ही भविष्य की पहली सीढ़ी होते हैं।
1: और उन्हें सिर्फ आंखों में मत रखिए, उन्हें अपने कदमों तक लाइए।
0: इसी उम्मीद, इसी विश्वास और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीजिए अनुमति, आप सुन रहे थे अनमोल द्विवेदी
1: और आद्या नायक को।
0: मुस्कुराते रहिए,
1: सीखते रहिए
0: और सपने देखते रहिए।
1: और सबसे जरूरी बात, हर दिन अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाते रहिए।
0: तो साथियों, फिर मिलेंगे युवाणी के एक नए विषय,
1: नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

श्रोताओं, अगला गीत है गिन्नी वेट्स सन्नी फिल्म से। इसे गाया है मीका सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह ने। गीत लिखा है मोहसिन शेख, पायल देव और बादशाह ने, और संगीतकार हैं पायल देव।

इसके बाद सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में बेताब फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

धूमधाम ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज़ों में। सिद्धांत कौशल ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं क्लिंटो सेरेजो और बेंका गोम्स।

कार्यक्रम का आखिरी गीत पिया मिलन की आस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ें, अशोक सक्सेना के बोल और संगीतकार हैं भूपी रतन।

0: वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
1: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
3: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
3: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
6: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

0: के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा तो हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: करेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: माय गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें।
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में और लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे। फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
4: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
1: ये ले।
6: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूरवीर।
7: श्रोताओ, अभी आपने
3: कार्यक्रम शूरवीर। और आइए सुनते हैं प्रेरणा देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: विश्व अंगदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, संयुक्त संचालक NHM मध्य प्रदेश, और डॉक्टर राकेश भार्गव, सदस्य मध्य प्रदेश अंगदान सलाहकार समिति। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है और भेंट करता है धारणा सचदेव।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस बार के हमारे खास कार्यक्रम में बात एक ऐसे विषय की जो किसी की जिंदगी खत्म होने के बाद भी किसी दूसरी जिंदगी को बचाने का मौका देता है, वो है अंगदान। भारत में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों का ही मकसद अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और लोगों के मन में मौजूद भ्रम को दूर करना है। लेकिन आज भी कई लोगों के मन सवाल है, कौन अंगदान कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, परिवार की इसमें भूमिका क्या है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितनी जिंदगी बचाई जा सकती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही वरिष्ठ संयुक्त संचालक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश भार्गव, आप शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ सदस्य हैं मध्य प्रदेश अंगदान सलाहकार समिति के। डॉक्टर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: सभी को नमस्कार।
1: पहला सवाल डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे करना चाहूंगी कि सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाएं कि अंगदान आखिर क्या होता है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितने लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं।
2: देखिए, अगर हम बात करें अंगदान की तो दो तरह के दान, एक तो अंगदान और दूसरा ऊतक या टिश्यू को भी हम दान कर सकते हैं। इसी तरह से हम लाइव डोनर यानी कि जिंदा रहते हुए कुछ अंगों को दूसरे अपने संबंधियों को दान कर सकते हैं, और साथ में मृत होने के बाद जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड होने के बाद, और कुछ ऊतकों को इवन नेचुरल डेथ के बाद भी दान कर सकते हैं। तो अगर हम बारी बारी से बात करें, जैसे कि हम देखें सबसे कॉमनली अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किडनी डोनेशन या जो हमारा रीनल डोनेशन है वो बहुत कॉमन होता है, और उसमें हम कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदार को एक किडनी दे सकता है क्योंकि हम एक किडनी के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऊतक भी ऐसे होते हैं जो आम तौर पर डोनेट होते रहते हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा है, ऐसे लोग जिनको ब्लड कैंसर है और उनको ज़रूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, तो नॉर्मल आदमी भी दे सकता है क्योंकि अस्थि मज्जा फिर से वो डेवलप हो जाती है। इसी तरह से लीवर का एक पार्ट या लंग का एक लोब हम डोनेट कर सकते हैं क्योंकि लीवर रिजनरेट हो जाता है, लंग रिजनरेट नहीं होता, पर एक छोटे लोब से हमारी जो कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात की हमने जो हम अपने रिश्तेदारों को या जिंदा रहते हुए कर सकते। उसके बाद बात आती है तो आम तौर पर चर्चा में विषय रहता है कि ब्रेन डेड जो लोग होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सांस तो नहीं रुकी है पर उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और कोई ये उम्मीद नहीं है कि अब वो ब्रेन दोबारा काम कर सके, तो उन उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे ऊतक हैं जिनका दान किया जा सकता है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग, जैसे कि लीवर, किडनी, और इसके साथ साथ दूसरे जैसे कि इवन इंटेस्टाइन्स, स्किन, और दूसरे जो इवन ऊतक रहते हैं, टिश्यूज, उनका भी दान इसमें संभव है। तो ये दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। नेचुरल डेथ अगर होती है तो उसके बाद भी हम कॉर्निया यानी जिसको आई डोनेशन करते हैं उसका दान कर सकते हैं। तो यह व्यक्ति पर, उसके परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है और ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
1: लोगों को अक्सर ब्रेन डेथ और सामान्य डेथ में अंतर ही समझ में नहीं आता कि क्या है वो। तो ब्रेन डेथ क्या होती है और ऐसे मामलों में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अंगदान कैसे संभव है।
3: देखिए, एक तो जैसे सामान्य डेथ होती है घर में चाय पीते हुए या कुछ भी कोलैप्स हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई, ऐसा हॉस्पिटल में भी हो सकता है सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से। और एक होता है ब्रेन डेड, जो यूजुअली 90% केसेस होते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि उसमें अक्सर जो है हेड इंजरी होती है
1: जी।
3: तो उस कारण से वो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं सिर में चोट लगने के कारण। ब्रेन डेड पेशेंट की ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। कोमा पेशेंट एक होते हैं जो 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी वापस जीवन आ सकता है, लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट

0: प्रदान किया जा सकता है। अगर उस समय जैसे उनके सभी अंग अच्छे हैं, लंग्स भी है और हार्ट भी है, तो उस समय हमें उस पेशेंट का मिलना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए हम बॉम्बे, दिल्ली या जहाँ भी लाइनअप करते हैं, अगर वो पेशेंट नहीं अवेलेबल होता तो फिर उनके उन अंगों का दान नहीं लिया जाता।
1: आपसे ही एक सवाल आगे और करेंगे डॉक्टर साहब, हमारे देश में अंगों की जरूरत और उपलब्धता के बीच कितना बड़ा अंतर है?
0: बहुत ज्यादा। देखिए, हर महीने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे प्रभाकर सर ने बोला था कि किडनी लिवर हम अपने भाई बहनों को दे दें, माता पिता को, परिवार को दे दें, लेकिन आप ये सोचिए जो 5 साल पहले हार्ट की अवेलेबिलिटी 40,000 थी वेटिंग लिस्ट, वो हुई 83,000। तो हार्ट तो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते ना, हमारा बेटा हो, माँ हो, पिता हो, कितना ही प्यारा हो, दे ही नहीं सकते ना, कॉर्निया भी नहीं दे सकते हम। तो लंग्स भी इस तरह से देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस कारण से जो है धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है।
1: डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति अंगदान कर सकता है और उसकी उम्र या किसी बीमारी की वजह से अंगदान नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ है?
2: सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी इच्छा।
1: जी,
2: अगर आप में इच्छा है, आप चाहते हैं कि अंगदान करना चाहते हैं और आपकी मृत्यु के बाद भी आंखें किसी को देख सकें, आपका हार्ट किसी में चल सके, आपका लीवर किसी का टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर सके, तो आप सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करिए। डॉक्टरों की टीम ये डिसाइड करेगी आपके कौन से ऑर्गन्स, कौन से टिश्यू लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, अंगदान तो एक चीज है जिसमें हम जिंदा लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके साथ साथ आपने सुना होगा देह दान भी इसमें किया जाता है, जिसमें बॉडी जो है वो रिसर्च के काम आती है। तो अगर हमारी इच्छा है तो हम अपने शरीर का प्रत्येक भाग किसी न किसी तौर पर इस समाज के लिए, जिसने हमें इतने साल तक जिंदा रखा, जिसने हमें इतने साल तक इज्जत बख्शी, उसको हम कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं।
1: और भी गलत फहमियां लोगों के मन में है डॉक्टर तिवारी, कि क्या अंगदान के बाद शरीर के साथ अंतिम संस्कार में कोई दिक्कतें आती हैं परिवार को, या इससे शरीर की गरिमा कुछ प्रभावित होती है, तो ऐसा इसको लेके आप क्या?
2: बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे कॉमन होता है आई डोनेशन में कई लोग इसलिए घबराते हैं कि अरे चेहरा तो सभी देखते हैं, कैसा दिखेगा। आप सब जानते हैं आंखें बंद रहती हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस व्यक्ति की आंखें डोनेट की गई हैं। इसी तरह से जब ऑर्गन रिट्रीवल किया जाता है तो ऑर्गन रिट्रीवल के बाद जो बॉडी है उसको उसी तरह से रिपेयर किया जाता है जैसे कि किसी जिंदा व्यक्ति की बॉडी को ऑपरेशन के बाद रिपेयर किया जाता है। दूसरे लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे कि इनके ऑर्गन्स डोनेट किए जा चुके हैं।
1: वही ब्रेन डेथ की बात हो रही थी कि अचानक में अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो उस समय परिवार को अंगदान के बारे में क्या फैसला लेना होता है, या डॉक्टर से किस तरह से अपनी मदद ले सकते हैं? डॉक्टर राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, जैसे जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है सीरियस कंडीशन में और डॉक्टर जब उनको मरीजों को बताते हैं कि अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है किसी भी कारण से हो, तो कभी कभी हमें मरीज के परिजनों का भी फोन आता है कि सर डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब इसमें आप कुछ अंगदान हो सकते हैं क्या? तो हम उनसे जाके बात करते हैं, डॉक्टरों से उसका मरीज की कंडीशन जानते हैं कैसा स्थिति, फिर उनको मरीजों को हम जो भी कंसेंट वगैरह लेते हैं, और उनको एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल उसको हमें ऐसे ब्रेंडेड पेशेंट को सहमति के बाद ट्रांसप्लांट सेंटर में शिफ्ट करना, क्योंकि ट्रांसप्लांट रिट्रीवल हर किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, वहाँ करते हैं। और एक और चीज़ अच्छी महत्वपूर्ण मैं बता दूं, जब मरीज को कंसेंट के बाद शिफ्ट किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उस मरीज को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और शिफ्ट करने के बाद फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो हम शुरू करते हैं, और जो रिसिपिएंट है उनको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी टेस्ट होता है, डॉक्टरों की टीम डिक्लेयर करती है, सब नियमानुसार जो सरकारी नियमानुसार ही होता है।
1: डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग, अभी आपकी भी अपील हुई और वैसे भी सुनने में आता रहा है, तो इसलिए अंगदान करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि अंगदान करने की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे?
2: देखिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं। हमारा जो एक नोटों का साइट है, आप अगर कुछ ना करेंगे, आजकल तो सब चीज़ें गूगल पर अवेलेबल हैं, आप सिर्फ नोटों डालेंगे आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं हमारी नेशनल अथॉरिटी के साथ, वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आप यह भी नहीं करना चाहते, मेरा तो सबसे जो आसान कहना, आप अपने परिवारजनों को इन्फॉर्म करके रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो अपने निकटस्थ डॉक्टरों को इन्वॉल्व कर दें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो डॉक्टर राकेश भार्गव और इनकी टीम ने सबसे पहले जो जागरूक करने

0: का काम किया, वो हमारे जो आईसीयू और दूसरे डॉक्टर्स थे उन्हीं को ही बताने के लिए कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाए। तो अगर आप साइट पर जाकर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले साल जब इसका अभियान चला था तो हमारे भोपाल जिले के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगदान के प्लेस लिए थे। तो उस पर जाकर कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स इतने अवेयर हैं कि आप अपनी इच्छा भी उन तक व्यक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्गन डोनेशन कहाँ किया जा सकता है, आर्गन डोनेशन के बाद रिट्रीवल कैसे होगा, जैसे कि नॉर्मल डेथ से तो नॉर्मल डेथ के बाद आई डोनेशन अगर करना चाहते हैं तो इवन घर पर रिट्रीवल हो सकता है, कहीं पर बॉडी को ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ अंगों के लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉडी को अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है, या ब्रेन डेड पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पर ऑर्गन रिट्रीवल की सर्विसेज उपलब्ध हों, और इसके बाद में अगर ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आजकल तो हमारी सरकार ही इसमें बहुत मददगार है कि न केवल एक शहर से दूसरे शहर बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सरकार मदद करता
1: है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमारी टीम पूरा हिंदुस्तान में लाइनअप करती है। आप कहीं भी रहते हो, लोकल बॉडी में एनजीओ में रजिस्टर करना इसलिए अच्छा रहता है कि हमारी तरह जैसे हम हर साल कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उनको बुलाते हैं तो उनके परिवार वाले और मोटिवेट होते हैं
2: जी, वही मैं
1: इसलिए लोकल बॉडी में इन्फॉर्म करने से अच्छा रहता है,
2: तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी जैसे तिवारी सर ने बताया कि कुछ प्लेज भी लेते हैं हर बार अभियान में, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, तो इस बार का कुछ नया थीम जो चुना गया है उसके बारे में भी आप बताएं, और किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को, और कुछ उसमें क्या खास करती है आपकी संस्था?
1: जैसे हम आपके सहयोग से जैसे आकाशवाणी दूरदर्शन और इसमें सोशल मीडिया और ये हमारा मीडिया वाले जो अखबार वाले हैं आप लोगों की मदद से इसमें बहुत हमें मदद मिली। क्योंकि जब 11 साल पहले हमने शुरू किया तो पेपर की न्यूज पढ़ के या दूरदर्शन के प्रोग्राम में लोग छतरपुर और सीतापुर दूर दूर से फोन करके पूछते थे, तो उससे अवेयरनेस तो डेफिनेटली आपकी मदद से बढ़ी। और हम जो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या होता है, म्यूजिकल इवनिंग या कोई फेलिसिटेट जिन्होंने कर दिया उनका सम्मान, या जो जिन्होंने प्लेज किया है उनको बुलाते हैं, तो एक उनको एक फीलिंग आती है। सोचिए जिनको हम 10 साल पहले अंगदान हुआ था उनको हर साल हम साल में दो बार बुला के फेलिसिटेट करते हैं, हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं या कभी सरकार की तरफ से, या हम तो हर साल करते हैं, तो एक आप सोचिए अदरवाइज हमारे परिवार में हमारे दादा दादी परदादा कब किसकी डेथ हुई किसको मालूम, पर एक अनजान आदमी को आपका कितने लोग उसको हर साल याद करते हैं जो अंगदान करके गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आप दोनों से सीधा सा संदेश हम चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान के बारे में सोच रहा है तो वह अपने परिवार से ये बात कैसे शुरू करे, और समाज में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सब अपने तौर पर क्या क्या कर सकते हैं?
1: देखिए जैसे एक जो भ्रांति मैंने बात की ना कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, और तो उसके लिए मैं एक ऋषि दधीचि का बोलता हूँ कि देखिए उन्होंने तो जब उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र देवता टीम के साथ आए कि हमें आपकी हड्डियों की जरूरत है, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा या विष्णु जी से पूछ के आता हूँ या मैं शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा, तो अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। तो एक दूसरी बात जैसे हम हमारे संस्कार हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि आपका कर्तव्य पहले है। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे तो उनके दो चेले थे, 150 साल पुरानी बात होगी, तो उनका नियम रहता है जैसे आश्रम में कि 4 बजे करना है फिर 5 से योगा, तो 6 बजे वह सामने गंगा नदी में 2 बच्चे डूब रहे थे, तो बच्चे चिल्लाए तो उन्होंने कहा अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा मेडिटेशन का टाइम है, वापस आंखें बंद कर ली। फिर गुरुजी आए उनको डांटा, उनको कहा कि देखो ईश्वर समाज सेवा किसी की मदद का मौका हमें कभी कभी देता है, हम भाग्यशाली अगर ईश्वर ने हमें यह मौका दिया तो आपके पास बाकी सारे काम पूजा पाठ मेडिटेशन सब कुछ करने के लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन जब ऐसा कर्तव्य समाज की सेवा के लिए किस मौका मिले तो उसको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, परमात्मा सेवा हो सकती है, व्यक्ति फिर से नहीं आ सकता, सेवा का मौका फिर ईश्वर दे देगा।
0: मैं इसमें एक पुराना गोस्वामी तुलसीदास जी का ही उदाहरण दूंगा, उन्होंने लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। हम अपने अंग दान द्वारा अनिश्चित काल तक जिंदा रह सकते हैं किसी न किसी रूप में, और मेरे ख्याल से किसी को नया जीवन देने से बढ़कर परहित और दान और स्वयं के अंग दान से बढ़कर शायद कोई दान नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम किसी भी धर्म के हों किसी भी समूह के हों हम वह परम दान करके जाएं कि दुनिया हमें याद।
2: जी बिल्कुल, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं की बहुत सी गलतफहमियां भ्रांतियां दूर हुई होंगी। तो श्रोताओं, एक फैसला कई जिंदगियां, केवल एक फैसला नहीं बल्कि किसी को जिंदगी देने का दूसरा मौका है अंगदान महादान। तो आइए हम सब अंगदान का संकल्प लें और मानवता के इस नेक कारवां का हिस्सा बने। आज के इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
3: डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, संयुक्त संचालक NHM मध्य प्रदेश, और डॉक्टर राकेश भार्गव, सदस्य मध्य प्रदेश अंगदान सलाहकार समिति। भेंट करता धारणा सचदेव, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है साजन बिन सुहागन फिल्म से, यशुदास और अनुराधा की आवाज़ें। इंदीवर ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं उषा खन्ना।

और लीजिए आप सुनिए आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने

0: विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें। चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% जबकि राज्यसभा में 39% से

0: अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित होगा 8:15 पर। आपकी फरमाइश का समय है 10:00, 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे अली अहमद हुसैन और पार्टी का शहनाई वादन।

7:30 पर भोपाल से प्रसारित किसान वाणी कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया से की गई भेंटवार्ता। मानसून के मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य। इसके अलावा सुनेंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा की कृषि वार्ता, खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15। 10:00 सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुनवाएंगे राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा बैरागी भैरव। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर आप सुनेंगे अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी धारावाहिक की चौथी कड़ी। छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर योगवाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश कल शाम 7:00 दिल्ली से रिले किया जाएगा। सुर्खियों में कार्यक्रम का समय है 8:00। 9:30 पर हम सुनवाएंगे यौमे आज़ादी पर केंद्रित मुशायरा। शायर होंगे आरिफ अली आरिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी और रीना अब्बासी, सरवर हबीब और फरमानुल्लाह खान, जो इस मुशायरे का संचालन भी करेंगे। 10:30 पर रागरजनी में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, राग है केदार। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें। पीएम सूर्य घर

0: www.govin पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यस्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन, मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं सहित विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भोपाल, ओंकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर और बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी भोपाल तिरंगामय होती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में गुरुवार को शहर के ऐतिहासिक बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल इस दौरान राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। युवा खिलाड़ियों ने काइकिंग, केनोइंग और केनो स्लालम शो के जरिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान तालाब के बीच देश में पहली बार फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं नौका सवार होकर देश सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
0: जबकि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। बैतूल, गुना, खंडवा, शहडोल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यस्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनसेवा, सुशासन और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय गड़रिया महासभा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में डॉ. यादव ने पाल गड़रिया बोर्ड के गठन की घोषणा भी की।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी जल्दी पाल गड़रिया बोर्ड का गठन भी होगा।
0: भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूरी प्रक्रिया को तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोहराया गया। परेड, मार्च पास्ट और ध्वजारोहण के साथ सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन आज किया गया, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। पहले दिन भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस हुई। वहीं कल समान नागरिक संहिता विधेयक पर

चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। रायसेन जिले में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के साथ प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर अच्छे बीज, खाद और पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व अंगदान दिवस के मौके पर कहा कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए नई आशा और नया जीवन देने का महान संकल्प है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए देश प्रेम और धर्म संस्कृति के संरक्षण के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी कल शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व छात्रों के सहयोग से बने आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरिना का लोकार्पण किया और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विश्व अंगदान दिवस पर लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की भी अपील की। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 18 अगस्त से समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश, जिले और गाँव स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जहाँ जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी जिलों में कलश रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। भोपाल में कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर पनीर के नमूने लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक इसे एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। इंदौर में भी करीब 800 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बाद अब मानसून का स्ट्रांग सिस्टम पूर्वी हिस्से में एक्टिव होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा 15 अगस्त को रविन्द्र भवन में आयोजित आज़ादी के महापर्व में प्रख्यात गायिका कविता कृष्णमूर्ति देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन HIV जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहडोल में स्थानीय उद्यमियों और समूहों के लिए लघु उद्योग भारती के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर में स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में PM पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजाति बाहुल्य गांवों में आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्योपुर में 14 अगस्त को विकासखंड कराल के ग्राम बरगवा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आगरमालवा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में पुरानी कृषि उपज मंडी से 51,000 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,467 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: खेती किसानी के समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया बहनों को आरती जीजी की राम राम पहुँचे। भैया जी देखो, कृषि को कार्य ऐसो है जी में कोनो एक के करे से नहीं होत, बल्कि महिला पुरुष दो ही खो मिलके करने होते हैं, तभी कृषि को कार्य पूरो होते है। तभी तो कहो गो है कि कृषि में महिलाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रन में लगभग 73 से 80% महिलाएँ कृषि और उसे जुड़े कार्यों में लगी भई हैं। हम महिलाओं के प्रमुख कार्य खेतन में बीज की बुआई, धान की रुवाई, निराई गुड़ाई, इसके अलावा फसलों की कटाई, अनाज की सफाई, भंडारण को प्रबंधन जैसे विशेष कार्य जो हैं हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था होवे और चाहे दूध निकालवे को काम होवे या मुर्गी पालन या मछली पालन, ये सभी हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पर इनको करवे के समय उन्हें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जैसे मालिकाना हक की बात कह लेवे तो महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम 8% ही होते हैं। दूसरे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कार्यों में 25 से 35% लो कम मजदूरी मिलत है। भूमि को कानूनी हक न होवे से कई बेर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य आधिकारिक ऋण योजनाओं को सीधो लाभ भी नहीं मिल पाऊत। हम महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावे के लाजे कृषि सखी जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसे ग्रामीण महिलाओं को कृषि विशेषज्ञ के रूप में तैयार करो जा रहा है। भैया जी, ई टाइम में मानसून को मौसम चल रहा है, इस समय फल फूलों के पेड़ पौधा के संगे साग भाजी की रुपाई कर देवें तो ना केवल उसे हमारी प्रकृति और आसपास को वातावरण हरो भरो बनो रहते, बल्कि फल फूल सब्जी की फसल लेके हम आर्थिक लाभ सोई ले सकते हैं। मानसून मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य कौन से करे जाते हैं जानत है विशेषज्ञ डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी से। उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, वर्षा काल चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस बरसात के मौसम में हम अनाज वाली धान फसलें ये सब तो लगाते हैं, लेकिन जो किसान भाई उद्यान की फसलों से जुड़े हुए हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, फल फूल उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि RNTU भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बात हम करेंगे वर्षा काल में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य। चौरसिया जी, उद्यान की फसलों से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों, जैसे हम जानते हैं बरसात का मौसम है, कभी बारिश ज़्यादा होती है कभी कम हो जाती है, पर इस समय जो फसलें लगी हैं यदि पानी अधिक बरसता है तो उसमें जल निकासी की व्यवस्था करना है पहला तो, ताकि उसकी जड़ें ना गलें। और जो किसान वही फल वृक्ष तैयार करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है। इस समय बडिंग ग्राफ्टिंग करके नए पौधों को तैयार कर सकते हैं, ताकि उनको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर रहेंगे और कम लागत में पौधे भी तैयार हो जाएंगे उनके। तो फल पौधों को तैयार करने का ये सबसे अच्छा सीजन यही है, क्योंकि इस समय वातावरण में आर्द्रता होती है तो उस समय उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। यदि यही हम किसी दूसरे मौसम में करेंगे तो सक्सेस रेट कम मिलेगा। बरसात के मौसम में हम जो भी बडिंग ग्राफ्टिंग का काम करते हैं, एयर लेयरिंग का, गूटी बांधने का काम करते हैं, तो फल वृक्षों में सफलता अच्छी मिलती है।
3: जी, बूटी बांधने का काम जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से ग्राफ्टिंग हो सकती है, हम थोड़ा सा फलों पर ही चलते हैं। फलों के जो बाग हैं इस समय, फलों के बागों में

0: के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, तने को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उससे बचाव हो जाता है। और अमरूद में एक समस्या आती है मक्खी की, वो क्या होता है जब फूल आता है फूल में अंडे दे देती है, और फूल से जब फल बनता है तो उसके अंदर ही वो इल्ली बड़ी होकर फल को खराब कर देती है। कोई भी दवा से हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन बाजार में कुछ फेरोमोन ट्रैप आ गए हैं। यदि फ्लावरिंग अवस्था से लेकर फ्रूटिंग अवस्था के बीच में हम वो फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो उसको नुकसान पहुंचाने वाली मक्खी फंस जाएगी, और बिना रसायनों के प्रयोग से हम बरसात के मौसम में भी अच्छे अमरूद के फल ले सकते हैं।
1: अब जैसे कि इस समय अमरूद में कीड़े लग ही चुके हैं, उन्हें तो बचाया जा नहीं सकता, लेकिन आगे जो फल आने वाले हैं उनको बचाने के लिए अभी से कोई सावधानी बरती जा सकती है क्या?
0: हाँ, जैसे अभी बरसात की फसल तो कम किसान भाई लेते हैं, ज़्यादातर अमरूद की फसल किसान भाई लेते हैं ठंड के मौसम में, तो उस समय सितंबर के महीने में जो नत्रजन उर्वरक है उसकी दूसरी खाद की मात्रा दें
1: जी,
0: और साथ में उस समय फेरोमोन ट्रैप लगा दें। तो उस समय जब फ्लावरिंग आएगी, अभी बरसात अमरूद में क्या होता है तीन बहारें आती हैं, अमरूद की फसल में फूल बरसात में आते हैं तो फल बनता ठंड में, तो इस समय जो फ्लावरिंग है उस समय हम बचा लेंगे, तो आगे आने वाले फल में हमारी जो इल्ली लगने वाली है उससे हम बच जाएंगे।
1: और फलों में नए पौधे भी बाग के लगाए गए हैं, तो जो नए पौधे अभी लगे हैं उनके लिए क्या खाद उर्वरक का प्रबंधन रखना चाहिए?
0: जैसे हम जानते हैं कि मिट्टी की जांच करा लें खेत की, चाहे वो फल सब्जी लगा रहे हैं धान्य फसलें लगा रहे हैं, मिट्टी की जांच कराने के पता चला जाएगा जिस पोषक तत्व की कमी है उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और हम बिना जांच के लिए डालेंगे तो पता चला जो तत्व हमारी मिट्टी में ज्यादा भी है फिर भी हम उसकी मात्रा ज्यादा डाले जा रहे हैं, किसानों भाइयों की लागत ही बढ़ती है। और ज्यादा नत्रजनी उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें क्या पौधों में रस बनता है तो उसको चूसने के लिए रस चूसक कीट आते हैं, तो उन संतुलित प्रबंधन करें यदि उर्वरकों का तो हमारा पौधा मजबूत बना रहेगा, उसमें रस चूसक कीड़ों का आक्रमण भी नहीं होगा और किसान भाई कम लागत में अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बोर्डो पेस्ट लगाने का तरीका क्या है फिर?
0: हाँ, बोर्डो पेस्ट कहते हैं बारिश के मौसम में जब खत्म हो जाता है सितंबर के महीने में
1: जी,
0: तो तने में चूने में नीलत होता मिला के तैयार किया जाता है और तने में लगा देते हैं, जो जो फफूंद जनित बीमारियां लगने वाली होती हैं पौधे में उससे बहुत नियंत्रण होता है,
1: नियंत्रण हो जाता है
0: जी।
1: हम अब बागवानी में चलते हैं सब्जियों की तरफ
0: जी।
1: सब्जी जो लगाते हैं किसान भाई, इस समय बहुत ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है उनकी पत्तियों पर
0: जी,
1: तो क्या उपाय है उसका?
0: किसान भाई को बरसात के मौसम में जो भी फसल लगाना वो उठी हुई बेड पे लगाना है ताकि पानी की निकासी हो जाए जब ज्यादा हो जाए। और हम इस समय देखते हैं कद्दूबर की सब्जियां ज्यादा लगाते हैं किसान भाई
1: जी,
0: तो कद्दूबर की सब्जियों की इस समय उनको बांधने का भी काम करना चाहिए, बधान जो होती है गर्मी के मौसम में हम नहीं बांधते क्योंकि लू चलती है, लेकिन बरसात के मौसम में जो फसल लगाते हैं उसमें बांस बल्ली से बांध के तार से रस्सी से सहारा दिया जाता है, जमीन के जितना टच में नहीं आएगा फल उसमें उतने कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, हवा में लटके लटके हवा भी अच्छी मिलेगी उसको, वो बढ़वार अच्छी होगी।
1: लेकिन फल सड़न तो यहाँ भी होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी।
0: हाँ, तो वो कुछ फफूंद जनित कारणों से होता है, फफूंद के कारण, और कुछ कीड़े खा लेते हैं इसके कारण भी खराब हो जाते हैं।
1: तो उसका उपचार क्या होगा?
0: यदि जो किसान भाई जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, घनजीवामृत है और जो अपने दशपर्णी अर्क है जो जैविक का प्रयोग करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और रासायनिक का जो प्रयोग करते हैं तो फफूंदनाशक की छिड़काव समय समय पर कर सकते हैं
1: जी। जी सर, नींबू वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो इस समय नींबू वर्गीय फसलों में स्ट्रेंग कैंकर रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है
0: जी,
1: और नींबू उत्पादक किसान इसको लेकर परेशान भी होते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए?
0: ये सिट्रस कैंकर से एक जीवाणुजनित बीमारी है और ये पौधों में तब होती है जब पौधे में कापर की कमी होती है, तांबे की कमी होती है, तो हमें कापर युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए एक तो मिट्टी में, तो पौधों में कापर की यदि कमी नहीं होगी तो वो जीवाणु से लड़ने की क्षमता उसमें वैसे बढ़ जाएगी, और यदि मान लीजिए लग गया है सिट्रस कैंकर तो फिर स्टेप्टोमाइसिन नाम की एक दवा आती है जीवाणुनाशी, उसका प्रयोग करना चाहिए छिड़काव करने में, कॉप्रोक्सीक्लोराइड के साथ स्टेप्टोमाइसिन मिला के छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है।
1: इसका डोज क्या रहेगा?
0: उसका एक कैप्सूल आता है स्टेप्टोमाइसिन का, 6 ml का रहता है, तो वो अपने 15 लीटर पानी के लिए काम आता है, और कॉप्रोक्सीक्लोराइड को हम कहते हैं 2 g/l पानी के हिसाब से मिला के दोनों को मिला के छिड़काव कर देंगे तो कॉप्रोक्सीक्लोराइड फफूंद जनित बीमारी को रोकेगा और स्टेप्टोमाइसिन जीवाणु जनित बीमारी को रोकेगा, तो दोनों तरह से नियंत्रण हो जाता है।
1: अच्छा, नींबू की फसल में एक समस्या और हो जाती है, अनार है नींबू है, इनमें फल बनते हैं बढ़ते हैं या तो वे झड़ जाएंगे बहुत छोटी अवस्था में, दूसरी समस्या अगर फल बढ़ गए तो वे फट जाते हैं, दोनों को कैसे संभालें?
0: जो आपने पहली समस्या बताई कि फल झड़ जाना, वो क्या होता है कि किसान भाई हम देखते हैं एनपीके का प्रयोग ज्यादा करते हैं, पर सूक्ष्म पोषक तत्वों

0: प्रयोग कम करते हैं। यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो फल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। और जो आपने समस्या बताई फल फटने की, वो क्या होता है कि जैसे पानी का गैप हो जाता है, जब काफी समय तक हमने फसल में पानी नहीं दिया और एकदम से पानी दे दिया तो वो उसका सेल से फट के बाहर आ जाता है, तो इसलिए भी समस्या आती है। और कई बार फसल में कीड़ों के प्रकोप के कारण भी फटने की समस्या आती है। तो सबसे पहले तो नमी का प्रबंधन अच्छा करें, हम समय समय में पानी देते रहें। जैसे जो किसान भाई ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो पानी उसमें रेगुलर मिलता रहता है, और जो किसान भाई फ्लड चॉइस करते हैं उनके यहाँ समस्या ज़्यादा आती है।
1: अच्छा, ये कहा जाता है कि बोरान की जो असंतुलन है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो कितनी बात सही है?
0: नहीं, बिल्कुल सही है। जो फलों का जो कटना होता है वो बोरान तत्व की कमी से होता है ज़्यादातर। एक तो अपन ने बात की कि नमी का अपन ने प्रबंध नहीं किया तो हो जाएगा, बहुत दिन से सूखा था फिर एकदम से पानी दे दिया, फसल ने ज़्यादा पानी ले लिया तो फट गया। दूसरा, जो बोरान की कमी होती है उसके कारण ही फल फटते हैं। तो बाजार में बोरेक्स एक उत्पाद, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या बोरान वाली घुलनशील खाद आती है उसको भी मिला छिड़काव कर सकते हैं।
1: अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई जो पत्र लिखते हैं और बात करते हैं कि इस समय अदरक की खेती किसान मध्य प्रदेश में बहुत आयात में करने लगे हैं। अदरक में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पत्तियों में सूखापन आने लगता है, ऊपर से नोक से सूखने लगती हैं पत्तियां, नीचे गलन शुरू हो जाता है
0: जी,
1: कई जगह ऐसी समस्या आ रही है, क्या किया जाए?
0: इसमें अदरक में हम देखते हैं फफूंद जनित रोगों की समस्या ज़्यादा आती है। जब अदरक का नया नया हम रोपाई करते हैं तो ऊपर पुआल से ढक देते हैं उसको, ताकि जब अंकुरण आए तो अंकुरण को समस्या ना आए। और जब अंकुरण आने के बाद वो पुआल हटा लिया जाता है, ऊंची हुई उठी हुई बेड पे लगाएं, और अच्छी उन्नत प्रजाति का, आज के समय में कई प्रजातियां आ गई हैं जो कई रोग बीमारियों से प्रतिरोधी हैं, उनका चयन करेंगे तो किसान भाई कई समस्याओं को प्राथमिक रूप से ही कर सकते हैं।
1: लेकिन अदरक में लीफ ब्लाइट की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे?
0: ये फफूंद जनित बीमारी है
1: जी,
0: तो कोई भी उचित फफूंदनाशी लेके उसका छिड़काव करेंगे तो समस्या से निदान पा सकते हैं।
1: मिर्च की फसल में भी हम बात कर लेते हैं, मिर्च की फसल में भी सर कुकड़ा रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, पर्ण कुंचन जैसे कह सकते हैं
0: जी जी,
1: पूरी मिर्च सिकुड़ जाती है, किसान बहुत परेशान है, शिमला मिर्च की बात हो या आपकी लंबी मिर्च की बात हो, इससे निजात पाने के लिए क्या तरीका है?
0: ये जो कुकड़ा रोग फैलता है वो एक कीट के कारण फैलता है, मिर्च में थ्रिप्स का अटैक होता है
1: जी,
0: थ्रिप्स उसमें रोग फैलाता है, और टमाटर में हम देखते हैं कि सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी जब आक्रमण करती है तब उसमें वायरस रोग फैलता है, तो कीट का प्रबंधन करना पड़ेगा तो ये रोग भी नहीं लगेगा समय पे। जैसे आज के समय बाजार में नीले पीले कार्ड मिलते हैं चिपचिपे, या तो उनको लेके लगा सकते हैं, या किसान भाई घर में यदि कनस्तर है उस पर पहले प्राइमर पोत दें फिर पीला नीला बार्निश पोत के खेत में लगा लें ग्रीस के साथ में, तो ये जो रस चूसक कीटे आके उस पर चिपक जाएंगे और किसान भाइयों की फसल में ये जो आपने बताया कुड़कुड़ा रोग नहीं लगेगा और दवाइयों पे उनकी निर्भरता भी नहीं रहेगी।
1: ओके ओके, भिंडी में भी चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि भिंडी की फसल ऐसी है 12 महीने उगाई जाती है, भिंडी की फसल में माहू का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, और भिंडी में जब माहू आती है तो वाकई भिंडी को बहुत नुकसान होता है, पूरी फसल में उसका प्रकोप होता है। एक सटीक नियंत्रण अगर भिंडी की माहू की बात की जाए तो
0: हाँ, माहू के लिए भी जो हमने आपको बताया था पीला कार्ड यदि अपन लगाते हैं तो पीले कार्ड में माहू की कीट छिपक जाते हैं, तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ में रोगोर नाम का एक केमिकल आता है, डाइमेथोड जो होता है वो सस्ता केमिकल होता है, उसका छिड़काव करें तो माहू का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
1: क्योंकि और ऐसा कोई विषय अभी जो छूट गया हो सब्जी में, फल में, या उद्यानिकी से जुड़ा हुआ, जिसे कि समय किसान भाई ध्यान रखें?
0: जैसे किसान भाई आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में सारी सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, तो किसान भाई इस समय धान की फसल ज़्यादा लगाते हैं, हम कुछ किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आधा एकड़ एक एकड़ में वो उद्यानिकी फसलों का भी समावेश करें, तो घर में खाने के लिए भी उनको सब्जी हो, और कुछ बाजार में बेचेंगे तो बाजार में सब्जियों की उपलब्धता अधिक होगी तो आम उपभोक्ताओं को भी सब्जी सही रेट पर मिल पाएगी
1: और किसानों को लाभ भी होगा, सर चलते चलते एक और सवाल मेरे मन में है कि किसान कहते हैं ना कि नगदी फसल लगाने में ज़्यादा विश्वास करता है, किसान को रोज खर्च करना है, रोज पैसा कमाना है, ऐसी कौन सी फसल है जिसको कि वे लगा करके रोज पैसा कमा सकते हैं?
0: हाँ, जैसे आपने अभी बात की थी भिंडी की फसल है, गिलकी की फसल है, ये कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती हैं, बस इनका समसामयिक प्रबंधन अच्छे से कर लें, हर दूसरे दिन में भिंडी टूटेगी, हर दूसरे दिन में आपकी गिलकी टूटेगी, इनको तोड़ के बाजार में आप विक्रय करें, अच्छे रेट मिलेंगे, कुछ घर में भी उपयोग कर सकते हैं अपने। गिलकी भिंडी तो ये हो गई खुले खेत की, अब जो किसान संरक्षित खेती करते हैं तो उसमें शिमला मिर्च

0: लगा सकते हैं, ठंड के मौसम में ब्रोकली लगा सकते हैं, अभी बरसात के मौसम में स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं।
1: अच्छा, फूलों की खेती को लेकर आपकी क्या विचार है, इस पर हमने अभी तक बात नहीं की।
0: हाँ, फूल हमारे तीनों सीजन के अलग अलग होते हैं, वर्षाकालीन अलग होते हैं, बसंतकालीन अलग होते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु के फूल अलग आते हैं। तो सीजन के हिसाब से फूलों का चुनाव कर सकते हैं। साथ में बरसात में यदि हम देखें तो गेंदा है, आपका क्राइसेंथेमम है, गुलदाउदी है, ग्लेडियोलस है, इनका प्रयोग कर सकते हैं लगाने में किसान भाई।
1: धन्यवाद लवेश कुमार चौरसिया जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे किसानों को जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान इन सारी बातचीत को सुनकर उन पर अमल करेंगे और लाभ लेंगे। बहुत बहुत आभार,
0: धन्यवाद।
2: अबे हम सुन रहे थे मानसून के मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार जा जानकारी लेके हमारे भैया हरे जरूर लाभान्वित हुई है। जिस जी सावन को मौसम चल रहा है तो सुन लेते हैं लीला जोशी के स्वर में जो कजरी लोकगीत।

0: अबे सुनी जो कजरी जीखों गा रही हती लीला जोशी। अब सुन लेते हैं लघु वार्ता डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी से खरीफ मौसम में समसामयिक कार्य।
1: किसान भाइयों, ये समय है हमारी फसलों को मुख्य रूप से कीड़े और बीमारियों से बचाने का। कुछ फसलें अगर देर से बोई गई हैं तो उनमें कुछ खरपतवार नियंत्रण करने का भी, और यदि कहीं फसलों में कमजोरी दिख रही है या पीलापन दिख रहा है तो उसमें पोषण की व्यवस्था करने का। हमारे प्रदेश की मुख्य फसल अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अभी कहीं कहीं शाखा और फूल निकलने की स्थिति है, और इसमें मुख्य रूप से जो कीट नुकसान कर रहे हैं वो हैं अलग अलग कलर की रंगों की इल्लियाँ। ये इल्लियाँ जो पौधे के नुकसान पहुँचाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कीट जो तने को नुकसान पहुँचाते हैं उसमें घुस के, जैसे रिंग कटर कहते हैं हमारे किसान भाई, और गर्डर ब्यूटल जिसका नाम है। तो इल्लियों के लिए नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो खेत का निरीक्षण कर लें और ये देख लें कि करीब 1 मीटर की लंबाई कतार की हो, उसमें करीब 2-3 इल्लियाँ अगर दिख रही हैं तो फिर हमें नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना आवश्यक है अपनी फसल को बचाने के लिए। तो ये इन इल्लियों में मुख्य रूप से हरे भूरे कलर की और कई रंगों की होती हैं इल्लियाँ। एक सेमी लूपर नाम की भी इल्ली होती है जो कुबड़ निकाल कर चलती है, उसको किसान भाई पहचानते हैं। तो ये सभी इल्लियाँ बहुत नुकसान करती हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए मिश्रित कीटनाशक बहुत प्रभावी हैं। उनमें एक बीटा साइहेलोथ्रिन और एमिडा क्लोप्रिड, इनके मिश्रण से एक ये बना है और इसको 350 मिलीलीटर दवा आवश्यक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये कीटनाशक अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरा थायमेथॉक्सम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन, ये करीब 125 मिलीलीटर दवा इसकी उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी एमामेक्टिन बेंजोएट, ये 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव दवाइयों का करना है। इसमें दवा छिड़कते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूरे खेत में छिड़काव हो, इसके साथ साथ मेड़ों पर भी इसका छिड़काव हो, जिससे जो कीट मेड़ों पर रह जाते हैं वो वापस खेत में ना आ सकें, वहाँ भी छिड़काव अवश्य करें। गर्डल बीटल के नियंत्रण के लिए लैम्डा साइहेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर, या पूर्व से जो उपयोग करते रहे हैं ट्राइजोफॉस 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी समय रोग भी आते हैं सोयाबीन में भी, अन्य फसलों में भी। तो मुख्य रूप से जो पीला मोजेक रोग है जिसमें पीली पत्तियां पड़ती हैं पौधों की, वो बहुत सामान्य रूप से फैलता है। इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रोग सफ़ेद मक्खी जो बहुत छोटी मच्छर जैसी होती है उससे फैलता है, और ये पत्तियों का रस चूस के दूसरी जगह जाते हैं और पूरे खेत में इसको फैलाते हैं वायरस को, और बहुत तेज़ी से पीलापन आता है। इसमें किसान भाई ध्यान रखें और बहुत तरीके से पूरा निरीक्षण हो, समय पर रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें, मिट्टी में गाड़ें, इधर उधर ना फेंकें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायमेथॉक्सम नाम का कीटनाशक का उपयोग करें, ये 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इससे जब ये नियंत्रित हो जाएगा तो पीला मोजेक रोग भी नियंत्रित रहेगा। धब्बे वाली कुछ बीमारियाँ भी सोयाबीन में होती हैं, उसमें फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और टैबुकोनाजोल 10 ग्राम और उसमें सल्फर मिलाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किसान भाई ध्यान रखें, अगर आवश्यक है तो 15-20 दिन की यदि फसल है तो एमाजाथा फायर 75 ग्राम या कुजुलफा पिथाइल का छिड़काव कर सकते हैं।
0: अबे आप सुन रहे हते खरीफ फसलों में समसामयिक जानकारी डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी से। जिज्जी लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ई योजना को उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भई हमारी ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ा के 1 लाख रुपए या उसे अधिक करवे को है। ई के साथ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता सोई दी जा रही है। ई योजना के बहुत सारे लाभ हैं। ई योजना से स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को जोड़ा जाता है। महिलाओं को वर्ष भर में 1 लाख रुपए कमावे योग बनाओ जाते हैं। स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करवे के लाजे आसान व कम ब्याज दरों पे ऋण की सहायता मिलत है। महिलाओं को सिलाई, कृषि, डेयरी, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे कार्यों को प्रशिक्षण सोई दिलाओ जात है। ई के लाजे पात्रता की कछु शर्तें हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच भव चाहिए। महिला को कोनऊ स्वयं सहायता समूह से जुड़ो भव चाहिए। लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलते हैं, जिसे वे अपने परिवार और समाज की आर्थिक प्रगति में योगदान देती हैं। भैया जी, अबे आप सुन रहे हते किसान वाणी कार्यक्रम। अब समय हो रहा है सो आरती बहन को देव आज्ञा। राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
1: किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:15। श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ, आपका दोस्त चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है आनंद मठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंदना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच

0: की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मानसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मानसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनियो में।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
4: आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: नमस्कार
4: त्रिपाठी जी। जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग जयपुर में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के बीच में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है। जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में हैं, और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं मार्ग पर, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जरूरत होती है। और इस परियोजना के लिए, हर काम के लिए जैसे पूंजी की जरूरत होती है, वैसे ही इन सब परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कलेक्शन से जो रेवेन्यू आती है उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए। और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो PPP में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए, जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों की भले ही भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको तो दरकिनार करके भी उनकी बेसिक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी करीब करीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती बल्कि कई और चीजें होती। एक तो सरकार का खर्चा
4: जी,
1: दूसरा उनके जो संस्थान हैं, उनकी संसद है, उनके विधानसभाएं हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनकी जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनके रेलवे वगैरह चल रही, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह, तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता
4: जी।
1: है। अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे या कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे
4: जी।
1: हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेस में वो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट ले, अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है, सड़क बनाता है या सड़क है बस चलाता है समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा लेकिन उससे की मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता था। अब इस चीज को समझा गया है
4: जी, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खुली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के लिए सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
1: जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप, एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी, ये पोर्ट ऐसे डेवलप होगा, या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा, या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा, या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है, तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, ये पैरामीटर है। इसके साथ ही ये भी पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वर्कर्स जो हैं उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहाँ ले जाएं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना हो। ये भी इसमें ये पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कॉरपोरेट समझौता करते हैं।
4: जी, और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश हैं वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
1: हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से तो सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि ना सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे, या न सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
4: जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
1: देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी 100 अरब डॉलर के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ 100 अरब डॉलर की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली, या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीज़ें की गई हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ही कर रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के ही कोऑपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा न करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दें, आप लोकल करेंसी में दें, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लक्चुएशन से बची रहे जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज़्यादा जोर दें, जो पर्यावरण को दूषित न करे जो प्रोजेक्ट, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के,
4: इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक्स हैं, केंद्रीय बैंक हैं किसी भी देश में, जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश हैं, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से ला रहा जा रहा है तो वो इन्वेस्टर किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितने दिन में वो जेस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं
4: जी,
1: सड़कें बनती हैं तो उसमें होता है कि टोल टैक्स लिया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले सकता है। तो यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीज़ें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है, इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाए जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
4: जी, जब हम त्रिपाठी जी विकास की बात करते हैं तो एक पूरे, जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
1: देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके रिफाइन और डाउन स्टीम दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही आप डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी हमें डिफेंस में कई चीज़ बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए चाहिए, तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, कई ऐसी चीज़ें हैं खनन के लिए हमें
4: जी चाहिए। जी खासतौर से अगर हम बात करें जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी हम विकास का काम करें तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती हैं आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
1: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बाढ़ आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की
4: जी,
1: तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे। और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित
4: जी। तो पंडित जी, अगर हम भारत की खास तौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहाँ पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
1: इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफ़ी सफल रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को करने के मामले में, जहाँ रोड है वहाँ ठीक है, जहाँ रेल है वहाँ तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉडल वाटरवेज अगर आप उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
4: जी
1: गंगा बड़ी हो जाती है तो
4: जलमार्ग
1: का विकास किया जाए। हम म्यांमार के लिए जलमार्ग का विकास कर रहे हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधान योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है
4: जी।
1: लेकिन कई इसमें क्षेत्र हैं जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
4: जैसे कि हम अगर जिक्र करें जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर लाया जाता है मालभाड़े, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
1: हाँ देखिए, अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है, बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वाहक जा रहा है तो जगह जगह पे उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से पिलफरेज की कोई वो ना हो, कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
4: त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
2: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनते हैं फिल्म संगीत। कुमार सानू की आवाज में सुनिए सर फिल्म का गीत। संगीतकार हैं अनु मलिक।

और लीजिए अब सुनिए बाबुल सुप्रियो और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में अनोखा अंदाज फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन

0: भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवार

0: ये पिछले साल 33.74 अरब अमरीकी डॉलर था। इस साल जुलाई के महीने में मजमू दरामदात में 15.83% का इजाफा हुआ और ये पिछले साल की इसी महीने के 82.16 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 95.16 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने यौम आज़ादी से कबल कौमी राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज माजूर अफराद के साथ खसूसी बातचीत की। बातचीत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने माजूर अफराद के तजुर्बात सुने और उनकी हुसूलियाबियों की खूब तारीफ की। इस खसूसी तकरीब ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माजूर अफराद को यकजा किया। इनमें पैरालंपियन, सिविल सर्वेंट्स, माहिरीन तालीम और कारोबारी अफराद शामिल थे। चीफ जस्टिस ने इन अफराद के अज़्म की तारीफ की और समाज के तई उनके ताउन को सराहा। पंजाब के साबिक नायब वजीर आला और श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल की हालत मुस्तहकम है और वो खतरे से बाहर हैं। आज सहपहर किरपान से किए गए एक हमले के सबब हाथ में जख्म के ठीक होने के बाद वो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में वाकई एक प्राइवेट अस्पताल में रूबर सेहत हैं। जनाब बादल और उनकी अहलिया हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत में गुरुद्वारा माता साहेब दीवान जी गए थे कि तकरीबन 1:45 बजे एक शख्स ने जनाब बादल पर किरपान से हमला किया। फौरन ही पुलिस अफसरान ने मदाखलत की और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल करडी के मुताबिक जनाब बादल और खसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के एक PSI के हाथों पर मामूली जख्म आए और फिल वक्त दोनों की हालत मुस्तहकम है। इधर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के SP से तफसीली मालूमात तलब की है और हमले की तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने जनाब बादल से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से उनसे बातचीत भी की। इस अफसोसनाक वाकई की मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसकी मुकम्मल जांच की जाएगी और कसूरवार को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC की दहशतगर्दी पर नजर रखने वाली एक टीम ने लाल किले में हलाकत खैज खुदकुश कार बम वाकये को बर्रे सगीर भारत में अलकायदा AQIS का काम करार दिया है। इस वाकये में 11 अफराद हलाक हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS अलग अलग ग्रुपों से बढ़कर एक इलाकाई दहशतगर्दाना ग्रुप के तौर पर उभर रहा है और उसने लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क कायम कर ली है और वो बड़े यूनिटों के बजाय गैर मरकूज छोटे और बिखरे हुए सेल्स की सूरत में काम कर रहा है। इस पस मंजर में टीम ने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए हैं। AQIS अलकायदा के लीडर एमन अल जवाहिरी की जानिब से साल 2014 में कायम की गई थी। न्यूयॉर्क में कायम ताउन और पाबंदियों पर नजर रखने वाली तजजियाती टीम ASSMT 10 माहिरीन पर मुश्तमिल है जो उन ग्रुपों और उनकी जैली तंजीमों की जानिब से आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखती है और वक्फे वक्फे से रिपोर्ट्स और अपडेट्स मुहैया करती है ताकि कमेटियों से ग्रुपों और अफराद के मुतालिक ये फैसला करने में मदद मिले कि किन पर दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों के सिलसिले में पाबंदी आयद की जानी है। चीन और रूस ने इस बरस भारत की ब्रिक्स की सदारत के लिए अपनी हिमायत की तौसीख की है। भारत चौथी मरतबा इस ग्रुप की सदारत करेगा। भारत में चीन के सफीर शू फिंगहोंग और रूस के शौजी फेर रोमन बाबुशकिन ने नई दिल्ली में आज विवेकानंद बैनुल अक्वामी फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा ब्रिक्स मुल्कों के सफीरों के राउंड टेबल डिस्कशन में हिस्सा लिया। सफीर यू ने कहा कि चीन आलमी उमूर में ग्रुप की किरदार को मुस्तहकम करने और ताउन को बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिक्स के दीगर मेंबर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। रूस के रोमन बाबुशकिन ने भी ब्रिक्स के सदर के तौर पर भारत की तरजीहात के तई रूस की हिमायत की तौसीख की और ग्रुप को आलमी खित्ते जुनूब के मफादात में पेशरफ्त के लिए और अमली ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। इस तबादला ख्याल में एक मजाहिम और पायदार आलमी निज़ाम की तश्कील में ब्रिक्स के रोल पर तवज्जो मरकूज की गई जिसमें सबकी शमूलियत कसीर सतहियत और जुनूब जुनूब ताउन पर जोर दिया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत को जिस मौजू से रहनुमाई हासिल होती है वो है मजाहिमत इख्तराआत ताउन और पायदारियत के लिए तामीर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हुरमुज पर वाशिंगटन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब अराकची ने अमरीका पर इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबी गुजरगाह के बारे में बार बार गलत अंदाजे लगाने का इल्जाम आयद किया। जनाब अराकची का यह तबसरा जनाब ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका को आबनाए हुरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और वो इसे बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान का फौजी बुनियादी ढांचा शदीद तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस दौरान ईरान ने यह कहते हुए जनाब ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हुरमुज बदस्तूर बंद रहेगी और उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक तेहरान की शरायत कबूल नहीं कर ली जाती। भारतीय महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले तीन से चार दिनों तक मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने इस माह की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। नाइजीरिया के लागोस में मुनक्कदा चार रोजा दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप मुकाबलों में भारत 35 तमकों के साथ चैंपियन के तौर पर उभरा है। भारतीय दस्ते ने इन मुकाबलों में अंडर 23 और सीनियर जुमरों में सोने के 13, चांदी के 8 और कांसे के 14 तमगे जीते हैं। सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने मुकाबले के चौथे और आखिरी दिन 6 मुकाबलों में सोने के 5 तमगे अपने नाम किए। इस बेहतरीन कारकर्दगी ने भारत को विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी दिलाने में भी मदद की, जो दौलत मुश्तरका तलवारबाजी फेडरेशन की जानिब से मजमूई तौर पर बेहतरीन नतायज हासिल करने वाले मुल्क को दी जाती है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, ओडिशा, गंगाई मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ कुल 35 तमगे हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरू में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर का लिखा, रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है बरसात की रात।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए भूल भुलैया 2 फिल्म का गीत। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, समीर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं प्रीतम।

你在这个。

और आइए अब सुनते हैं कैफी आजमी का लिखा, बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गीत। सुराग फिल्म के लिए इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अगला गीत आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में है। चांदनी फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार शिव हरी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया रिफ्यूजी फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से फरमाइश की है सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। घंटाघर चौक खंडवा से फरमाइशी पत्र भेजा है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन समरीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आप सभी ने फरमाइश की है मौसम फिल्म के गीत की। इसे गाया है भूपेंद्र ने और शब्द रचना गुलजार की है, संगीतकार मदन मोहन।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है। अगला गीत अभिमान फिल्म से है। लता मंगेशकर और मनहर ने इस गीत को गाया है। मजरूह ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं SD बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश की है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से गीत की फरमाइश करते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। अगली फरमाइश गोला बाजार बक्सर से की है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। तो आइए, आप सभी की फरमाइश पर पेश है अभिमान फिल्म का गीत।

सिर्फ तुम। श्रोताओं, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। अगला फरमाइशी पत्र भेजा है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाव खत्री ने। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है सिर्फ तुम।

इस गीत के साथ आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अली अहमद हुसैन और पार्टी का शहनाई वादन, राग है यमन।

0: है, और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfil its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
2: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. but continuous sloganeering and protest.